भजन करो हरे जगह।

सारे से भेज सारे जेने अरे भजन करे ते भेज सारे जेने लंका राज दिलाए।

करो हरि जगत जगतार भजन करो हरि जगत जगतार भजन।

0: शुभ कर्म। बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक

0: थी क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने इस समुदाय से बात की थी और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खासतौर पर महिला किसान।
0: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरो भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरो भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता का बात है?
0: का बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तो ना आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: का कह रहे ने, कठी आँखें बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भौजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए, भौजी से बेसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी कि ने तुम मे संगे चलू।
1: तुम्हारे संगे चलू?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने।
1: हारे चलू?
0: हाँ।
1: ऐसा कहते हारे कि हम हारे चले थे।
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लू, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बाद में पढ़ लीजिए, आखने मुझे जरूरी काम है, वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी का बात है, बता नहीं बता दे तो।
0: का कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा है भौजी, के ऐसी का बात है, तो ही बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है।
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, का तो अच्छी सी बता दू ने, मैं का डाल लू ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जो दवाई ले आती, लेकिन इनसे का कोती मुझे कछु फायदा थोड़ी न पड़ रहा है गो। और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई याद हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारे नाम के
0: भी। अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आउट का?
1: अरे आउट तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थे एक बात है।
0: अच्छा तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, तुम्हारी कैसी है?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी
0: दवाई देते ही।
1: चलो देखे तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: तो देख भौजी, देख जा अभी भी आसो की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ाई जाने या तो खेती करने तो जिनमें देखो जी, आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई, ये देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने आओ तो ही। हाँ। पढ़ भी जाने तो और खेती भी करनी है संगे संगे, देखो अब किसानी को गांव गाड़ों को काम है तो सब करने आओ
0: तो
1: ही।
0: हाँ, वो तो ये नहीं है कि लालाजू मैं जा कह रही, तुम कहाँ जा रहा थे? मैं देखो तुझे भटन में कैसे कीड़ा मीरा सो लग रहा है वो, और का नहीं आने से लग रहा है, कहाँ जा रहा तुम्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुल्कन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू, मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही, कौन मेरे घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया था ही का, तुम जाने का करा था जुमून, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी है, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजू, तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी, मैं तो जबकि देसी दवाइयां को इस्तेमाल करे थे, मैं तो बड़े वहां से आई थी। अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा हो जाए, काहे के भी पढ़े लिखे है, अच्छी दवाई ले आ तुम।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काहे को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच दू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी
1: तो भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी, ते तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ते अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ, उसमें तो बनाते ही हूँ, माँ में कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ, जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर है बनाऊ तो, और अपनी बैगन में और चैन सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही? भौजी
0: का कह रहे लालाजू, काय को मस्करी कर रही?

0: का नहीं दिखा रही।
1: ओके तेरे के घरे बना उसका दवाई बना वो हासी के लेता।
0: हाँ लाला जू मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ।
1: अब तो भाजी चला ही नहीं आती यार देखो
2: कैसे चल देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: ना ये कहो कीड़ा लगो कीड़ा के ना जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषक बुला लेते हैं तो उनसे पूछा था कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊं मैं
1: हैं?
0: जो अपनी चीजें हैं प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊं।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो अब तो चला ही नहीं आए तो हारे
0: चलो देखो अब देखो लाला जी जो तो लगो मेरे बैगन और जी अब मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
1: वो भोजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: कहा कह रहे भोजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जाए लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी है। मैं तो इतना घरे बना था अपनी हिसाब
1: लेकिन भोजी जी टपक जाए भी मटका धरे जे खाएगी धरे चार पाँच।
0: कहा कह रहे लाला जी टपक जा में लोटा धरे।
1: लोटा नहीं भी मटका धरे बट तू टपक जा में।
0: हाओ लाला जी मैं मटकन से मैं मटका खाद बनाता हूँ।
1: मटका खाद
0: हाओ
1: वह कैसी बनाता
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा था उनमें जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
2: अच्छा
1: लेकिन तो मैंने जसूची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सकते है तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तूने जरूर सीख भी आऊँ दवाई बना।
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग लेवे के लाने।

0: दोस्तों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरू भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरू भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
3: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है, उसमें अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी, उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
3: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
3: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
4: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
4: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गए, उड़द हो गए, चना हो गए, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
4: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
4: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी है, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
4: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
5: हमारा नाम है रईस यादव, लिधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
5: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है मतलब। गोबर खाद,
1: अच्छा
5: जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
1: अच्छा आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
5: धीरे धीरे होगा। तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और गोबर जो मान है गौ माता का ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद भी हो जाता है और फसल होने लगती है। फिर
1: अच्छा, जैविक
5: वो भी
1: खेती खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
5: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है वाला है,
1: आय बढ़ती है? कैसे
5: आय
1: बढ़ती
5: बढ़ती
1: है?
5: है उससे। मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो बन
1: अच्छा,
5: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया टुकाई चलेगी उसकी।
1: धन्यवाद भाई
5: हाँ,
1: साहब।
6: ब्रजकिशोर कुशवाहा।
1: अच्छा ब्रजकिशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
6: हमें पता नहीं है सर,
1: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
6: नहीं है जानकारी सर।
1: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
6: अब जी हमें पता नहीं है सर।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
7: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।

माला माल कर देती जा जेब के खेती, माला माल कर देती जा जेब के खेती।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
0: आपका सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है। 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा, और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर। तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं

0: का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद खाद है उनको डाला जा रहा है खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है। तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से। जी
1: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है? क्योंकि अभी है रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक
0: जी
1: खेती का?
0: जी जी इसके अनेक लाभ हैं। और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी,
1: जी
0: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा।
1: जी
0: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर,
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही,
1: जी
0: साथ
1: सर,
0: साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि
1: जी
0: अस्थाई कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के
0: जी
1: उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हां, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
2: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे। लेकिन श्रोताओं, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेल

0: प्रखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था। और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार।

0: साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 समाचार सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं। चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की या फिर व्यक्तित्व विकास की या फिर सफल कहानियों की या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की, तो जैसा समय होता है वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं जिनको अपना कर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: साथियों अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स हैं, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है। भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल

0: है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाएं, सुनने की आदत डालें, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों, नकारात्मक जो शब्द होता है ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती है, पीछे पीछे चली आती है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे आपको दूर रहना है और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें, ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है। तो आगे हम जहां पर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं वहां पर

0: विकास होता है और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है, उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खासतौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मोबाइलों को नहीं, क्योंकि मोबाइल एक टाइम के लिए होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका समय पास नहीं होता है, तब थोड़ा सा मनोरंजन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है आप अपनी किताबों को ही बनाइए, मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं। आगे एक और बात आती है, व्यक्तित्व विकास में हमें सुनने की आदत भी डालना है। दोस्तों कभी भी हम कहीं जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो सुनने की आदत आप डालिएगा, बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है। आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर क्या काम करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, दूसरों को महत्व दें ये भी बहुत जरूरी रहता है, अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें, ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते हैं यहाँ पर इस गीत को और गीत के बाद फिर लौटेंगे और व्यक्तित्व विकास के जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं उस पर चर्चा होगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और

नीति अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी।

0: बात साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने, उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को पहचानें एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना फिर व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो करें। सभी के बीच नॉन वेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉन वेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। यह सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको लग रही होंगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिलें, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव भाव दिखने लगता है, आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रण करें। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी।

0: है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
1: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह, इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाए और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए, अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फुगा फूफा भाई, मामा माई भाई और जीजा जीजी भाई, इन्हों तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में है तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है, और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था, और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं, उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है। या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग हमारे रिलेशन वाले होते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वो क्या समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं, इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है। और आखिरी बात है, नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है, और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर, जो हमें आपको बतानी थी। हमें

0: ऐसा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल सही उतरे, सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसके लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन-किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है, हमें जरूर फोन के माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है। जिस साथी में हमारा पता भी है, जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा।
0: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
1: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा के दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी, और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो, जिस शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती, और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोई जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेवरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो आ चला थेंगे राधापुर।

0: राम अम्मा?
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं? कहाँ करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी।

0: काम करत
1: आंगनवाड़ी हाँ, हाँ, कितने हाँ, साल से कर रही
0: हम कर रहे 20 साल से
1: 20 साल से
0: हाँ, 20 साल से कर
1: अच्छा तो आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे हाँ, तो जैसे शुरुआत की बात करें आपको मायको कितने हैं
0: हम मायको झांसी में है
1: झांसी में कौन जगह
0: झांसी में है गोविंद चौराहे है ढाल के नीचे राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी
1: हाँ, हाँ,
0: उन्हीं के नीचे रहते थे
1: अच्छा उन्हीं
0: हाँ,
1: के नीचे हाँ, रहते थे आपके परिवार में खूब है तो
0: हमारे परिवार में हमारे भैया थे भाभी थी बहने थे तीन बहने थे
1: अच्छा तो और मम्मी पापा
0: आते हो
1: अच्छा आपके घर पे का काम होता तो?
0: वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब कहते हो ज्यादा जमीन नहीं होती मजबूरी करते और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी गुजर गए थे हम लोग सब छोटे थे हमारी अम्मा के लिए का करती
1: हाँ,
0: तो अम्मा ने सबको लगा दो तो कोई को 10 रुपया महीना से कोई को 5 जब समो छोटो
1: अच्छा 10 रुपया
0: हाँ 10 रुपया से हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हमें 10 बच्चा खिलाते उनके
1: अच्छा,
0: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती 10-5 रुपए दे देती महीना भर में
1: तो मतलब इस तरह से चलत रहते अच्छा अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी आपने
0: हमने पढ़ाई 5 तक करी
1: 5 तक पढ़ाई करी है अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है
0: हमारी उम्र 2 साल कम रहेगी 60 साल में
1: 60 साल में 2 साल कम हाँ। रहेगी आपकी तो हमने बचपन में काम तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे लेकिन उसे और छोटे जो बचपन होते ही हाँ। जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती
0: जब ध्यान थोड़ी रहा जब तो खेलता ही खाता
1: हाँ तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले
0: खेल अब का कंची खेल रहा है कहीं रेडी खेल रहा है बस यही खेल खेलते थे और चपट्टा खेल रहा है
1: चपट्टा
0: साउंड को चपेटा कलर
1: अच्छा
0: जी खेल रहे
1: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ हाँ। खेलत में गीत सुनाओ
0: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में
1: अच्छा गीत ही नहीं याद
0: है
1: पहले तो गा सुनियो आप
0: अब भूल गए अब तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता
1: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको
0: बुढ़ापो का नहीं है
1: तो कौन सा गीत गाती
0: है कौनों नहीं गाते
1: हैं आप गाते नहीं अच्छा आपकी सहेली कौन कौन आती है
0: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए अब सहेलियन को जाने कहाँ कहाँ गई को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके कोई की कहीं शादी हो गई कहीं की कोई की कहीं हो अपने अपने घर चली नहीं सर
1: अब मिलती हूँ आप लोग
0: हाँ मिल जाते
1: कभी
0: कभी इकट्ठे हो जाता खुशी तो जो से अपन लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता
1: अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे मतलब पैर का कपड़ा कौन कौन से चलाते
0: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिरा करने मिली तो बिस्कुट पहन लेते हैं ये पहन लेते और हम तुमने फिरा कर दे रहे तो ये पहन लेंगे बस और यही पहरा
1: हो मतलब अलग से नहीं
0: कोनो अलग से नहीं है
1: तो अच्छा तो अब हम आपसे बात करें आपकी शादी कितनी उम्र में
0: हम आई अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन कितने उम्र में हमारी भाई आती
1: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में
0: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी
1: बिल्कुल नहीं जानती अच्छा जिसे आपकी शादी हो रही थी वो आपने देखो तो
0: हाँ?
1: पहले से देखो तो
0: हाँ? नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा
1: अच्छा
0: देख से तो आते ही हमारे बाप माता 8-9 साल के साथ 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे 9 साल की शादी कर रही थी तो जिन जिन को काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने बोली तो मैं 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो 500 चुका उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया फोन में दाए थे
1: अच्छा
0: हाँ तो वही बताई नहीं होती कई में
1: 500 रुपया में ब्याह होगा
0: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे रहे वैसे ही के बिटिया को पुण्य ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा
1: अच्छा।
0: बड़े बड़े सेठ लोग
1: तो
0: सही ऐसे वहाँ ब्याह होगा
1: अच्छा जब आपकी ब्याह होगा एक ही बात कितने आपकी ससुराल देते हैं राधापुर में भाई है
0: ना हाँ राधापुर
1: राधापुर में ससुराल है आपकी तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी जैसे पहले दिन तेल मंडप
0: पहले पहले मंडप तेल भाव फिर मंडप भाव फिर टीका भाव
1: अच्छा 3 ही दिन को ब्याह हो
0: तो हाँ 3 दिन को हो
1: तो बारात 3 दिन मिली रही थी
0: नहीं एक ही दिन
1: 3 दिन

0: आती है ना,
1: तिल वदना आ जाती
0: है। नहीं ले आते टीका के देना।
1: अच्छा।
0: और फिर भावर मार बरतती पे तो वो देना थोड़ी जाती बरा, दूसरे दिन आ जाती। जयमाला नहीं डरी मैं ना, मैं तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार के उनसे अपन खोलियन पे खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
1: अच्छा।
0: और जब तुम जो होट पर लाल बाको बिलाई।
1: अच्छा, जो
0: सब पहला
1: तो मतलब
0: मड़वा के नीचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सबने बस। फिर बाहर चलो गो लड़का, फिर पंगत मंगत होने लगी। पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ो चढ़ो
1: चढ़ो
0: तो आप हमें ना चढ़ी थी 1 किलो के वो खम वज्जा।
1: 1 किलो की पेज ना
0: हाँ, वो 1 किलो के पेज ना वो खम वज्जा
1: वो
0: जो इतने पे रखते पे नहीं थे
1: बाजू बंद।
0: हाँ दे चढ़े थे।
1: अच्छा तो अब रखे
0: हो आप? हाँ अब की बात है।
1: अच्छा
0: छह लड़का होगा, छह लड़का के ब्याह कर ले।
1: अच्छा
0: कहाँ से आ रहा
1: है? सही बात है। अच्छा आपकी विदा का है वही दी?
0: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
1: हाँ।
0: भाई में भाई थी
1: बेटा
0: नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे।
1: बैलगाड़ी में
0: वैसे बैठ जाते लेकिन बेदा हो के हमारी गाड़ी गई से आई थी।
1: अच्छा बैलगाड़ी
0: झांसी से होती पहले बेदा सवाई की होती हमारी का।
1: अच्छा।
0: पहले जो वाहन कहाँ थे ओरछा तक नहीं जाते, खेलार तक नहीं जाते, अब तो एक कदम नहीं रहा आदमी।
1: अब तो अगर उधर भी जाना है
0: अगर तुम्हें कारस देव में जाना है तो गाड़ी से
1: जाना है।
0: जाना
1: है सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आए तो ससुराल में खूब मिलो आपको?
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा आप कितने नंबर की
0: हैं? हम दूसरे नंबर के। नानी दादो
1: लंदन की शादी हुई?
0: हाँ।
1: शादी के बाद बड़ी हाथी।
0: हाँ।
1: अच्छा तो फिर आपके
0: एते
1: का
0: रस्म
1: है
0: हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे।
1: अच्छा, खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
0: खिचड़ी बनाई थी।
1: आपने खुद बनाई थी?
0: नहीं बना पाई थी हमने, हमारी जेठानी ने बना दी थी।
1: अच्छा।
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम होगा तो
0: अंडा द्वारे में और अंडा रवा दे।
1: अच्छा और एंडर वाली। जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई सबने खाई तो फिर काका नेक मिलो तो आप?
0: हमें नहीं एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
1: वो देने।
0: हाँ।
1: ये उल्टा नहीं हो रहा
0: के? पहले देता ही है तेल।
1: अच्छा।
0: अब ये भी देता मोरन के।
1: हाँ।
0: जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहू से सास लेते हुए पैसा चाहे 10 धरे चाहे 11 हो चाहे 100 लेकिन वो सास ले और अंडा तो रखत बहु।
1: अच्छा।
0: तो बेबी सास ले।
1: अच्छा,
0: जी की सास ना हो तो जेठानी
1: ले। तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास, तो आपके समय में खुलत?
0: नहीं हमारे समय में नहीं खुलत
1: जूड़ा नहीं खुलते
0: नहीं।
1: अच्छा आपकी
0: जो छोड़ा खुलते जो
1: छोड़ा खुलते
0: जो छोड़ा
1: ये भी पैसा
0: सास खोल सकती है
1: मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास कछु महत हो जी जी।
1: अच्छा आपको नहीं पता?
0: ना छोटे आते से कछु दे
1: समझ नहीं आते होते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपनी ससुराल में फिर कैसे काम कराती? जेठानी के संग मिलकर कराती या लड़ाई होती?
0: जेठानी के संग कराती, लड़ाई का एक नहीं होती।
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप?
0: नहीं हमारी नहीं हुई जेठानी से ना सास से भाई कब
1: होना काय नहीं होती। आप सीधी आती के दो जने
0: भी दो एक से आते मिलके कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा सो सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा और ये सासरे में का काम होती आपके?
0: खेती होती रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: फिर मोटर कहाँ होती? रात ऐसे खेती होती से रात चलाते रहते।
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
0: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
1: कितने बजे उठाती
0: है? 4 बजे उठ जाते
1: है।
0: 4 बजे से पी सकते 5-6 किलो नाच पीस लेते।
1: 5-6 किलो रोज पीस?
0: हाँ रोज। तो जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती?
0: 4 बजे से भी पी सकती।

0: संज्ञा पीस थी
1: ना कब हम संज्ञा कब हम अलग अलग पीस।
0: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीस भी काका काम
1: फिर गोबर का मोबर डाल रखते
0: कितनी गाय भैंसे
1: होती आप 10-12 गैया होती गोबर मोबर डाल रखते झाड़ा झूरी कर रखते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
0: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती
1: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते सो रात चलाते दिन भर।
0: अच्छा वो हाथ से बहाने आते
1: नहीं बैलन से घर में नहीं आती लोहे सब वही चलाते रहते कब हम सास जेठानी चलाती कब हम चलाते रहते
0: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आप
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: नहीं, नहीं। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है ये
1: हमारा 6 लड़का
0: और लड़की
1: लड़की नहीं है
0: लड़की नहीं
1: है
0: तो
1: अपने परेशानी हाथी से कुछ नहीं पढ़ा।
0: अच्छा
1: 5-5 पढ़ा है यही स्कूल में बस।
0: अच्छा सरकारी स्कूल में तो अब सबकी शादी हुई।
1: हाँ सबकी हो गई सब सब नाती ने तुलन की हो गई।
0: अच्छा नातीन की भी हुई कितनी नाती है ये
1: 6 नाती है 6 नातने हैं।
0: आपकी मतलब बड़ा
1: परिवार है। हाँ तो 6 लड़का है तो 2-2 है सबके।
0: अच्छा,
1: और एक के 4 है बड़े के 3 मोड़ी है तो एक मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए
0: परिवार
1: 3 मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा एक के छोटी एक के मोड़ा होगा एक के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो
0: बहुत बड़ा परिवार है। आपको अच्छा लगा थी त्योहार
1: पे
0: सब
1: जने
0: आ जाते हैं तो और अच्छा लगा
1: था
0: ये ना। तो आप सुहाटा नहीं खेलती
1: हो कैसा खेलती
0: आप
1: अपनी सुबह तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो
0: है
1: चौक पूरो तो बस पे खेल
0: गाना गाते
1: अब भूल गई
0: भूलने नहीं आते याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप
1: 20 साल से ज्यादा हो गई।
0: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई।
1: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी
0: कैसे लग गई थी मतलब
1: पहले उनने इन्हें 4 जनन के कागज दे थे भर के तो सबने 200 रुपया में लगते तो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें नहीं करने हमें नहीं करने से फिर बोली चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत इन्हें 350 में लगते हमें 200 रुपये
0: तो
1: फिर हम इनके ससुर बोले लग जाओ हम दे दे वो करें तो मैं 2-4 रुपये ली नाच खावे के लाने बच्चे का कर इनके ससुर दे देते 2-4 रुपये ली नाच पानी भरे आते लगे रहे इनके तो पानी तो अभी भी अब छोड़ दो हमने बना तो नहीं अब जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब से पानी भरो उनको उन्हें खाए पीवे की परेशानी से कि अब जैसे नहीं आते जो दे तो सकते खाओ और नहीं करते तो को दे रहे
0: सही बात है
1: दे रहे तो को भी ना करे।
0: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी लाके मिल जाता आपको
1: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना नहीं 2,500 फिर 350 आए हमारे फिर 1500
0: अभी तो फिर धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया आपके पूरे जीवन को अनुभव का रहो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो
1: हम जो खेती किसानी सीखी हो जा आंगनबाड़ी कर ली फिर से जाकर
0: नहीं आपको का लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे
1: जो पहले तो महत्व देखो आप सोच रहे आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ पढ़ा लिख रहे।
0: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है
1: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे की का सोच रहे बताओ
0: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही
1: है लेकिन नाम मिल रहा है पहले कहाँ मिला
0: था पहले नहीं मिला तो लेकिन अब मिल रही तो अभी के लाना पढ़ाई चाहिए है ना बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
1: और का कहना
0: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं
1: अपनी को तो सब हमारी मोड़ी सब 8-8 पढ़ी नातने नाती पढ़े
0: तो पढ़ाना चाहिए।
1: हाँ सब पढ़ रहे को पढ़ रहा हो को बड़ी बड़ी हो गई सब 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो ब्याह पढ़ दो नातन की
0: बहुत बढ़िया
1: को पढ़ दो दो नाती पढ़ रहे की
0: चलो बढ़िया अम्मा आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है गो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उनकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को। लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है गो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे, या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप और सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे, हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, काहे कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत। अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत को जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और मित्रों, खेत खलियान कार्यक्रम में आज विशेष कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं जल जंगल जमीन की तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो किस तरीके से एक संकल्प यात्रा ददरुआ सरकार से चलकर यहाँ पर ओरछा आकर इन सारी प्राकृतिक जो संसाधन है और साथ साथ में गौ संवर्धन को लेकर बचाने के लिए कितनी एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका एक अथक प्रयास डॉक्टर अजय मिश्रा जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में आज हम उनको सुनते हैं।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि जब हम अपने पर्यावरण को एक बार देखते हैं और जब उस पर हम बातचीत करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन

0: कारणों से ही जलवायु परिवर्तन हो रहा, उस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। और बड़े बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ पर डॉक्टर अजय मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। इन्होंने ददरुआ सरकार से ओरछा धाम तक एक यात्रा निकाली है, उस यात्रा के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, साथ साथ में पर्यावरण, गौ संवर्धन, इन सारे मुद्दों पर आज हम विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। सभी मेरे भारत के देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से।
0: सर जानना चाहेंगे कि जो आपने एक संकल्प लिया है, खासतौर पर बड़े सौभाग्य होता है कि इस तरीके की संकल्प यात्रा देश में निकालना, और खासतौर पर आपने एक संकल्प लिया है कि हमें गौ संवर्धन को बचाना है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाना है, और खासतौर पर कृषि को लेकर आप बहुत चर्चा में रहते हैं। तो जानना चाहेंगे कि सबसे पहले उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये जो यात्रा आपने सोचा सोचा था, उसका मुख्य उद्देश्य सर क्या था?
1: ये जो यात्रा है समाधिया जी,
0: जी
1: ये दरअसल विगत 10 वर्ष 15 वर्षों से यात्रा चल रही है।
0: जी
1: इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि इस सृष्टि में
0: जी
1: ईश्वर ने हम सभी को भेजा है,
0: जी
1: तो निश्चित इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर आने में हमारे परिवार माता पिता का योगदान होता है, जैसा कि विधि का विधान है।
0: जी
1: लेकिन जब हम जन्म लेकर जैसे जैसे बड़े होते हैं,
0: जी
1: तो हमें बड़ा करने में प्रकृति का, परिवार का,
0: जी
1: समाज का,
0: जी
1: देश का
0: जी
1: बहुत योगदान होता है।
0: जी
1: इन सभी के लिए हमें काम करना चाहिए, निश्चित हमें माता पिता के लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई,
0: जी
1: तो लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया
0: बिल्कुल
1: एक
0: सही
1: सिलेंडर के लिए, जो धरती माँ
0: जी
1: वर्षों से,
0: जी
1: लाखों वर्षों से हमारी पीढ़ियों को ऑक्सीजन फ्री में दे रही है।
0: बिल्कुल सर
1: वो कभी कुछ ही उसने बिल नहीं भेजा,
0: बिल्कुल सर
1: कभी कुछ मांगती नहीं है।
0: बिल्कुल सर
1: तो उसके लिए काम करना
0: जी
1: ये सबका कर्तव्य है,
0: जी
1: सबका धर्म है।
0: जी
1: तो हमारा उद्देश्य है कि लोग पेड़ पौधे लगाएं,
0: जी
1: आने वाली पीढ़ी को
0: जी
1: जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने
0: जी
1: हमें हरा भरा वातावरण दिया था,
0: बिल्कुल सर
1: अच्छी खेती दी थी,
0: जी
1: उपजाऊ जमीन, आज हम लोग निरंतर अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से
0: जी
1: धरती माँ को बीमार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: आज हमारी धरती माँ संकट में है।
0: जी
1: यदि धरती माँ संकट में होगी,
0: जी
1: तो भविष्य में हमारा जीवन संकट में आ जाएगा।
0: जी
1: तो आने वाले पीढ़ी का जीवन संकट में ना आए,
0: जी
1: इसके लिए ये जन जागरूकता कार्यक्रम हमारा चल रहा है।
0: जी ये सर कब से स्टार्ट हुआ है, और इसमें किन किन चीजों को आपने विशेष तौर पर ध्यान दिया है सर?
1: इसमें मैं ये मानता हूं
0: जी
1: कि हमारे जो बुजुर्ग हैं,
0: जी
1: उनकी जो कहावतें हैं,
0: जी
1: लोगों के लिए वो कहावतें होंगी,
0: जी
1: मेरे लिए वो जीवन का मूल मंत्र है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि उत्तम खेती
0: जी
1: मध्यम बांझ।
0: बिल्कुल सर
1: एक और कहावत है
0: जी
1: कि पहला सुख निरोगी काया।
0: बिल्कुल सही है
1: यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है,
0: जी
1: तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है।
0: बिल्कुल सर
1: एक स्वस्थ शरीर में
0: जी
1: स्वस्थ विचार आते हैं।
0: जी
1: जब विचार हमारे स्वस्थ होते हैं,
0: जी
1: तो हमारे कार्य स्वस्थ होते हैं,
0: जी
1: और जब कार्य स्वस्थ होते हैं, तो हमारा जीवन भी समृद्ध
0: स्वस्थ
1: होता है।
0: बिल्कुल सर
1: तो स्वास्थ्य के लिए,
0: जी
1: चूंकि मेरा सौभाग्य है
0: जी
1: कि मुझे मेरे देश के महान लोग, जैसे कि प्राकृतिक खेती में आदरणीय सुभाष पालेकर जी,
0: बिल्कुल सर
1: आदरणीय डॉक्टर हमारे त्रिपाठी जी,
0: जी
1: आदरणीय हमारे कुंडू साहब,
0: जी
1: इन सब के साथ मुझे रहने का अवसर मिला है। तो
0: बिल्कुल
1: मैंने उनसे जाना है, और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि धरती माता ने हमारे देश में एक ऐसे आयुर्वेदाचार्य को प्रकट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश टाटा, जो विश्व के एक महान आयुर्वेदाचार्य हैं। भारत की जड़ी बूटियों का झंडा लेकर 122 देशों में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे उनका भी सानिध्य मिला। आदरणीय आचार्य मनीष जी, जो हिम्स हॉस्पिटल है, उनके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जीनासी को जो उनका कार्यक्रम है, ये ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य है कि हमारा देश जागे।
0: जी बिल्कुल
1: बीमार हो के आप अपने जीवन की गाड़ी कमाई

0: खर्च ना करके
1: जी
0: आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हमें उस पे काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर।
0: तो हमने पहला शुरुआत की खेत से, कि स्वास्थ्य के लिए
1: जी
0: अगर कोई दुनिया में, इन सबसे मेरा एक ही सवाल था
1: जी जी
0: कि आप तो मुझे ये बताओ कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते
1: रहे। बिल्कुल सर।
0: समाज स्वस्थ कैसे रह सकता है
1: जी।
0: तो सबका एक ही जवाब था कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन के अलावा

0: बिल्कुल सर
1: जिस तरह हमारे बुजुर्ग
0: जी
1: सुबह 5 बजे उठ जाते थे,
0: जी
1: शाम को सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लेते थे,
0: जी
1: क्योंकि जब रात्रि में बहुत लेट हम भोजन करते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: सर
1: तो जो प्रकृति ने हमें जो भोजन पचाने की मशीन दी है,
0: जी
1: जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं,
0: जी सर
1: वो मंद हो जाती है। तो
0: बिल्कुल सर
1: भोजन पचता नहीं है, वो भोजन सड़ता है।
0: सड़ता है
1: जब
0: बिल्कुल सर
1: भोजन सड़ता है
0: जी
1: तो कई विकार पैदा होते हैं।
0: बिल्कुल सर
1: तो स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध भोजन और हमारी जो दिनचर्या है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
0: जी
1: यदि बीमार हैं तो आयुर्वेद पे विश्वास करो।
0: बिल्कुल सर
1: आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है
0: जी
1: और आज के समय में
0: जी
1: उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं।
0: जी
1: हमारे डॉक्टर प्रकाश टाटा जी
0: जी
1: और आचार्य मनीष जी
0: जी
1: निरंतर रिसर्च कर रहे हैं।
0: जी
1: तो आज हिम्स हॉस्पिटल में
0: जी
1: जो लोग 100-100 कीमो ले चुके हैं
0: बिल्कुल सर
1: कैंसर में, वो
0: बहुत
1: लोग भी वहां आ रहे हैं
0: बहुत
1: और
0: बढ़िया
1: ठीक हो रहे हैं।
0: बिल्कुल सर
1: किडनी फेलुअर लोग आ रहे हैं,
0: बिल्कुल सर
1: वहां लीवर फेलुअर लोग आ रहे हैं
0: बहुत
1: और
0: बढ़िया
1: ठीक हो रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सर
1: ये जो हमारा स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है,
0: जी
1: इसमें आदरणीय डॉक्टर प्रकाश टाटा जी,
0: जी
1: आचार्य मनीष जी
0: जी
1: और हम तीनों लोग मिलकर ये
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन का झंडा लेकर
0: जी
1: भारत में गांव गांव जाने का हमारा प्रयास है और
0: बिल्कुल
1: समाज को जगाने का हमारा प्रयास
0: सर एक चीज हमारे मन में चूंकि बहुत दिनों से भी खटक रही थी
1: जी।
0: लेकिन उसका जवाब हमें कहीं सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था, हमें कहाँ कमी देखने को मिल रही हो, खास तौर पर हम अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में लोग खेती पर आश्रित रहते हैं। समस्या यहाँ पर यह आती है कि जब हम किसानों के पास जाते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, समस्या उनका मानना यह है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करने जाएंगे तो उसके लिए हमें 4 या 5 साल वेट करना पड़ेगा। उसमें सर आपका क्या मानना है कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए इस पर?
1: मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में सफलता और असफलता निर्भर करती है कि आपका सलाहकार कौन है।
0: बिल्कुल सर
1: महाभारत की कथा हम सबने सुनी है,
0: जी
1: कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी उनकी पराजय हुई,
0: बिल्कुल सर
1: क्योंकि उनके जो सलाहकार थे
0: जी
1: वो शकुनी थे।
0: बिल्कुल सर
1: पांडवों के पास छोटी सेना थी
0: जी
1: फिर भी वो विजय हुए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: उनके जो सलाहकार थे वो भगवान श्री कृष्ण थे।
0: सर
1: तो जब भी जीवन में कोई काम आप करते हैं
0: जी
1: तो मैं किसान भाइयों से ऐसा आग्रह करूंगा कि आप एक अच्छे सलाहकार के साथ जुड़िए। तो हमारा स्वच्छ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन किसानों के लिए सलाहकार के रूप में काम करता है। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में
0: जी
1: हमारे बुंदेलखंड के ही मैं बात करता हूं,
0: जी सर
1: बुंदेलखंड के उरई
0: जी
1: के पास एक गांव है
0: जी
1: कुकर गांव,
0: जी जी
1: वहां के हमारे एक प्रगतिशील किसान है
0: जी
1: शिव शंकर चतुर्वेदी जी।
0: जी जी जी
1: तो 2019 में हमारी उनके साथ मुलाकात हुई,
0: बिल्कुल
1: तो मैंने उनको समझाया
0: जी
1: कि आप एक अपने खेत पे एक बागवानी का एक मॉडल तैयार करिए,
0: बिल्कुल सर
1: तो ऊपर आपको फल मिलेंगे, नीचे आप इंटरक्रॉपिंग में आप खेती करिए
0: जी सर
1: और जो आपकी मेड़े हैं
0: जी
1: उन पे आप ऐसे पौधे लगाइए कि
0: जी
1: जो आपको लॉन्ग टाइम में
0: जी
1: एक अच्छा पैसा आपको रिटर्न मिल सके।
0: बिल्कुल सर
1: किसान को प्रेजेंट टाइम, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम,
0: जी
1: यानी आज कल और परसों, जैसी
0: परसों
1: हमारे यहाँ कहावत है
0: बिल्कुल सर
1: भाई, आज हमें जरूरत है हमारा घर चलाने के लिए,
0: बिल्कुल सर
1: कल हमें हमारे बच्चे के या किसी के कोई शादी विवाह के लिए कार्य पैसे की आवश्यकता है,
0: जी
1: हमें 20 साल बाद हमारे बच्चों की कुछ और कोई कार्यक्रम करेंगे, तो
0: बिल्कुल सर
1: उस तरह की प्लानिंग करके
0: जी
1: वहां हमने एक मॉडल बनाया है।
0: जी
1: तो मेरा विशेष आपसे आग्रह रहेगा कि इस
0: जी
1: मॉडल को आप भी प्रमोट करिए।
0: बहुत बढ़िया
1: उस मॉडल को हमने नाम दिया है खेती का एटीएम,
0: बहुत
1: यानी
0: बढ़िया
1: किसान को ऑल टाइम पैसा कैसे
0: पैसा
1: मिले।
0: बिल्कुल सर
1: तो वहां हमने व्यावसायिक खेती में अमरूद, नींबू
0: बहुत
1: और
0: बढ़िया
1: एप्पल वेयर लगाया हुआ है।
0: जी
1: तो क्या होता है कि अभी हमारा एप्पल वेयर चल रहा है,
0: बिल्कुल सर
1: फरवरी में चालू हो जाता है,
0: जी
1: फिर हमारा अप्रैल मई से हमारा नींबू चालू हो जाएगा
0: बहुत बढ़िया सर
1: और अक्टूबर में हमारा अमरूद चालू
0: आलू
1: हो
0: चालू
1: जाता
0: हो
1: है।
0: जाएगा
1: तो
0: बहुत बढ़िया
1: 12 महीने हमारे शिवशंकर चतुर्वेदी जी को पैसा
0: जी
1: मिलता
0: आमदनी
1: है।
0: बिल्कुल सर
1: नीचे हम लोगों ने हल्दी लगाई हुई है,
0: जी जी जी
1: अभी हम लोग हल्दी में प्लान कर रहे हैं, कल भी हमारी बात हुई थी कि ऐसे हल्दी को ले उखाड़ के
0: जी
1: और इसका हम चिप्स बनाएंगे,
0: बिल्कुल सर
1: चिप्स बना के हम सेल करेंगे, क्योंकि
0: बहुत बढ़िया
1: क्योंकि आजकल मिलावटखोरी बहुत चल रही है।

0: ज्यादा बिल्कुल।
1: तो हम ये चाहते हैं कि लोग प्योर प्योर ऑर्गेनिक जी और बिल्कुल एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट लें।
0: बिल्कुल
1: चिप्स होने से फायदा ये होगा कि वह जो भी खरीदेंगे आराम से अपने घर की मिक्सी में उसका पाउडर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो उसमें चिप्स में कोई मिलावट नहीं हो सकती
0: जी।
1: अपने घर में आप पाउडर बनाएंगे
0: बिल्कुल
1: तो वो एकदम ओरिजिनल बनेगा, 100% ऑर्गेनिक है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो उस मॉडल को
0: जी
1: जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान भाइयों से कि उरई के पास कुकरगांव है, शिव शंकर चतुर्वेदी जी के मॉडल पे आप लोग जरूर जाइए। वहाँ सैकड़ों किसान आते हैं, उस मॉडल को देख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। वहां जब सुन के और जब हम देखेंगे तो हमें विश्वास होगा कि नहीं, ये भी संभव है और ऐसा हो सकता है कि एक हेक्टेयर से भी किसान 5 से 7 लाख रुपया कमा सकता है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन में आप जुड़िए। हम कोई सदस्यता शुल्क नहीं लेते हैं, निःशुल्क जोड़ते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, किसी प्रकार का कोई परामर्श शुल्क नहीं लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़े, आपको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बागवानी, मिश्रित खेती और स्वावलंबन के बारे में हम पूरा आपको प्रशिक्षण देंगे।
0: बहुत बढ़िया। क्योंकि सर एक चीज और उसमें हम जोड़ना चाहेंगे, हम लोगों ने भी सर 2009 में इस तरीके की मुहिम एक छेड़ी हुई थी कि शुभ कल, आने वाला कल किस तरीके से शुभ हो। हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एक हमारी परियोजना थी सर, उसमें हमने 100 गांव में इस तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, जैसे कि किचन गार्डन हुआ सर, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और हम जो इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं उसको लेकर हम लोगों ने एक, जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति गेम खिलाया गया था उसी तरीके से हम लोगों ने खिलाया था। समस्या ये आई थी कि शुरुआत में थोड़ी हमें कठिनाई जरूर हुई थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने जब इस तरीके की परियोजना में देखा सुना तो वो जुड़ना स्टार्ट हुआ। समस्या अब यहाँ आई है जब परियोजना हमारी बंद हो गई है। परियोजना बंद होने के बाद 1-2 साल उन्होंने प्रयास किया कि इस क्या नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम आगे बढ़ाएं। अब समस्या वहां पर ये आ रही है उनको कि मार्केटिंग की समस्या कि हम कहाँ पर, चूंकि जब ऑर्गेनिक को लेकर हम बाजार में जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का उगा हुआ ये चीज है, इसको आप खरीदिएगा थोड़ा रेट आपका बढ़ के मिलेगा। समस्या ये आती है कि लोग उसको सुनते नहीं है। इसमें सर आपकी क्या राय है, किस तरीके से लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जागरूक होंगे?
1: निश्चित सवाल यह है जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें हमारा जो स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन है
0: जी,
1: इसका काम यही है
0: जी।
1: जैसे हमारा किसान है
0: जी,
1: तो किसान गांव में है
0: जी,
1: उनके पास उत्पाद तो है
0: जी,
1: लेकिन जैविक या अपना नेचुरल प्रोडक्ट है
0: जी,
1: बहुत हमारे ऐसे लोग हैं
0: जी,
1: जो ये प्रोडक्ट चाहते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: उन्हें मालूम नहीं है ये क्या है, दोनों के बीच में गैप
0: है। बिल्कुल।
1: गांव में जो व्यक्ति बैठा है वो इसलिए नर्वस है कि मैं पूरा प्राकृतिक कर रहा हूँ, मेरा उत्पादन भी कम हो रहा है लेकिन मुझे दाम अच्छा नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल सर।
1: शहर में जो लोग बैठे हैं वो इसलिए परेशान है कि पैसा पूरा खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। शहर में भी हम लोग सदस्य बना रहे हैं
0: जी, जी, जी।
1: और गांव में भी हम लोग किसानों को सदस्य बना रहे हैं। शहर में हम लोगों ने एक मिशन शुरू किया है खुशहाल जिंदगी। खुशहाल जिंदगी हम कैसे जिए, शुरुआत वहीं से होती है, भोजन से। शुरुआत भोजन से ही होगी
0: जी, जी, जी, जी।
1: जीवन में समाधिया जी, खुशहाली बिना हेल्थ के संभव
0: नहीं है।
1: अगर आप हेल्थ से अच्छे हैं तो आप सब चीजों का आनंद ले सकते हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है कुछ भी अच्छा नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन के साथ जुड़े। आपकी जो मार्केटिंग की समस्या है उसका भी हम लोग मिलकर हल निकालेंगे। नंबर दो
0: जी,
1: आज के समय में हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अब वक्त गाँव का है।
0: बिल्कुल सर।
1: गाँव का इसलिए है कि शायद जो पश्चिमी सभ्यता है
0: जी,
1: उसका भोग भोग के अब लोग थक चुके हैं। अब लोग गांव में जाना चाहते हैं
0: जी।
1: अभी हमारे यहाँ भारत में ग्रामीण टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल।
1: अब लोग शहर में की अपेक्षा
0: गांव में
1: रुकना पसंद कर रहे हैं। आपके यहाँ नजदीक में लाड़पुरा गांव है, वहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वो जो वहाँ पे होम स्टे है, 2-4 लोगों का मेरा परिचय है, मैं पूछता रहता हूँ कैसा चल रहा है। बोले सर बहुत अच्छा चल रहा है, यात्री आ रहे हैं। तो अब लोग गाँव की तरफ लौट रहे
0: हैं।
1: और लोग देसी प्रोडक्ट की तरफ लौट रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे होटल बन गए हैं जहाँ देसी भोजन मिलता है, वहाँ भीड़ लगी हुई है। शहरों में भी अब लोग ये सब पूड़ी पराठा और फास्ट फूड छोड़कर अब लोग दाल टिक्कर को लोग पसंद करने लगे हैं। तो मेरा ऐसा आग्रह है मेरा ग्रामीण भाई बहनों से, नौजवानों से, किसानों से कि निराश मत होइए, समय आपका आ रहा है इस, और आपको काम करने की जरूरत है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप फेसबुक है, यूट्यूब है, हमारे जो सोशल मीडिया है उस पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करिए, और बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी करेंगी। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, लाइसेंस क्या चाहिए, ये इस तरह की जो सहयोग चाहिए तो वो हम उनको करेंगे। ये आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, और बस लास्ट में हमारा एक सवाल है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं बहुत सारे दिन में मन में सवाल चलते हैं कि आज पहले कितना जंगल हुआ करता था, खासतौर पर अगर ओरछा की ओर देखा जाए। आज हम जान रहे हैं कि नई देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी रोड बन रहे हैं, बहुत सारी सिटियां बन रही हैं, डेवलप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो जंगलों की कटाई खासतौर पर देखने को और सुनने को मिल जाती है, तो मन में काफी मतलब दुख होता है कि इस तरीके का जंगल हुआ करता था, अब नहीं है। आपका क्या मानना है सर
1: इसमें? मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। एक मैं छोटी सी एक कहानी इसमें जोड़ता हूँ। एक दूध देने वाला व्यक्ति था, गांव का सीधा साधा किसान, बाजार दूध देने जाता था और वहां से उस बेकरी से वो 1 किलो बेकरी लेके घर पे आता था। एक दिन उस दुकानदार ने कहा कि मुझे 1 किलो घी चाहिए, तो वो दूसरे दिन घी लेके आ गया। दुकानदार ने जब उसको तोला तो घी 800 ग्राम निकला। दुकानदार ने उसके ऊपर केस कर दिया। केस कर दिया तो वो अदालत में पेश हुआ किसान। तो जज साहब ने कहा कि तुमने चीटिंग की है और तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा दायर हो गया है, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो किसान ने कहा मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है।
0: बिल्कुल।
1: तो जज साहब बोले कि तुमने इन सेठ जी को 1 किलो की जगह 800 ग्राम घी दिया है। तो उसने कहा हजूर, मैं तो किसान हूँ, मेरे पास तो तराजू भी नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये सेठ है। मैं इनके यहाँ से 1 किलो वो लेके गया था, अभी बेकरी 1 किलो बेकरी लेके गया था, उसी के बदले मैंने घी तोला।
0: बहुत बढ़िया।
1: तो मैं गलत नहीं हूँ, गलत ये है। आज क्या हो रहा है, हम लोग एक ही ओर दौड़ लगा रहे हैं, पैसे की ओर।
0: बिल्कुल सर।
1: जब पैसा ही सब कुछ हो जाएगा तब हम ना नदी का ध्यान रखेंगे, ना पौधों का ध्यान रखेंगे, ना परिवार का ध्यान रखेंगे, ना समाज का ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल सर।
1: मेरा स्पष्ट मानना है कि ठीक है पैसा आवश्यक है, लेकिन जीवन में केवल पैसे से ही अगर आप समृद्ध हो गए तो आप समृद्ध नहीं है। आपको परिवार से भी समृद्ध होना है
0: जी,
1: आपको समाज से भी समृद्ध होना है
0: जी,
1: आपको शरीर से भी समृद्ध होना है
0: जी।
1: इन सबसे अगर समृद्ध होना है तो हमें बैलेंस समृद्धि के लिए काम करना पड़ेगा। ये जो नदी है, जो तालाब है, जो पहाड़ है, जो पक्षी है, जो जीव जंतु है, हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये वो धरती है जहाँ सबको जीने का अधिकार है और सहजीवन। हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी को नष्ट करें या किसी को समाप्त करें। जिस दिन हम पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे ऑक्सीजन कौन देगा? आपकी ये जो घमंड है पैसे का
0: जी,
1: भूल गए 5 साल पिछले 2020 में सारे घमंड चूर हो गए थे ना। प्रकृति का ये छोटा सा रूप जिसे पूरी दुनिया सह नहीं पाई, ये रूप कभी दोबारा ना बने, इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी से कि अपने जीवन में आप अपने जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर हजारों लाखों खर्च करते हो, करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, भगवान ने आपको दिया है खूब खर्च करो, लेकिन जिस पृथ्वी ने, जिस धरती माँ ने हमें जीवन दिया है और हमें सांसें दे रही है, उसके लिए हर साल कम से कम एक पौधा हर व्यक्ति जरूर लगाए, ये अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। अगर हम एक एक पौधा लगाना शुरू करेंगे तो देश में हर साल करोड़ों पौधे लगने लगेंगे और धीरे धीरे क्लाइमेट की जो समस्या है इस पर नियंत्रण होगा,
0: बिल्कुल
1: जरूर होगा।
0: बिल्कुल सर।
1: और गौ माता के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आज जो गौ माता दर दर भटक रही है, मेरा आप सबसे आग्रह है, कोई चीज जब हमारे जीवन में नहीं होती है ना तब हमें उसका एहसास होता है। एक चीन की घटना है, मुझे ठीक से सन याद नहीं आ रहा है, तो वहां किसी ने प्रधानमंत्री को सलाह दे दी होगी कि जो फसल में जो गौरैया चिड़िया होती है ये बहुत नुकसान करती है, बोले इस गौरैया चिड़िया को पूरा समाप्त करवा देना चाहिए, और पूरा चीन गौरैया को मारने में लग गया। अंत में परिणाम ये हुआ गौरैया तो मर गई लेकिन फसल में इतने कीड़े आ गए कि वहां लाखों लोग भूख से मरे, लाखों लोग भूख से मरे। तो जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं हमारा हमारे खेत में केंचुआ हमारा सबसे बड़ा मित्र है, जो हमारे खेत में लाखों छेद करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जब बरसात होती है उन्हीं छेदों से धीरे धीरे पानी अवशोषित होता है और वही पानी हमको पीने को मिलता है। हमारे जो चूहे है, कछुआ है, सांप है, एक भी चीज प्रकृति ने व्यर्थ नहीं बनाई है। मेरे देशवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एक भी योजना चलने वाली नहीं है, आप कितने भी प्लान कर लो।
0: जी सर।
1: आज जितने बड़े बड़े किले हमको खाली दिख रहे हैं, क्या उन्होंने प्लान नहीं किया होगा किसमें हमारा परिवार रहेगा, हमारी पीढ़ियां रहेंगी, क्या वहां रह रही है आज? नहीं रह रही ना, सारे किले खाली पड़े हैं। तो आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाकर जो धन इकट्ठा कर रहे हो, इससे आपकी कोई प्लानिंग चलने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को हानि पहुंचाएगी। पैसा कमाइए ईमानदारी से। आज जो मिलावटखोर लोग हैं मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, अरे हम एक दूसरे को जहर देंगे एक दिन हम सब नष्ट हो जाएंगे, हमें खुद सुधरना है। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, दुनिया को मत सुधारो, एक पौधा साल में एक बार हमें लगाना है, ये हमारी प्रतिज्ञा होना चाहिए। गाय माता को हम अपने घर पे नहीं पाल सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हिंदू होने के नाते हम अपने घर में अपने प्रतिष्ठान में कम से कम एक धूप बत्ती सुबह और एक धूप बत्ती शाम को लगाते हैं। यही धूप बत्ती यदि हम गौ माता के गोबर से बनी हुई खरीदना चालू कर दें तो भी आप गौ भक्त कहलाएंगे। जब आप धूप बत्ती खरीदेंगे, धूप बत्ती की मांग बढ़ेगी, तो जो हमारे गौ भक्त गौ माता को पाल रहे हैं वो और ज्यादा गौ माताओं को पालेंगे। तो मेरा जहां भी इस आपके जो चैनल को लोग सुनते हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कम से कम आप लोग अपने घर में गौ माता से बने हुए उत्पादों का उपयोग शुरू कर दीजिए, गौ माता भक्त आप कहलाएंगे और गौ माता के आशीर्वाद से आपका परिवार हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगा, ये निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय का भी एक प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं उसको, समय का भी चीज रहती है कि एक कार्यक्रम को एक समय रहता है, तो हम आगे ना बढ़ते हुए सर आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर उन साथियों से फिर से दोबारा सर के माध्यम से, चूंकि सर ने अपील की है और हम भी अपील रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जो सर ने संकल्प के लिए बात बताई है वो संकल्प आप जरूर लीजिएगा। हमें गौ माता को बचाना है, हमें देश को बचाना है, हमें अपने जल जमीन और जंगल को भी बचाना है, और इनकी प्रतिज्ञा हमें करनी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर
1: बहुत बहुत धन्यवाद समाधिया जी आपका, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आपने इस विशेष कार्यक्रम को सुना। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें एक प्रयास करनी चाहिए, एक मुहिम हमें चलानी चाहिए, और ख़ासतौर पर इन सारी चीज़ों को अगर हमें बचाना है, प्राकृतिक चीज़ों का जो हम दोहन कर रहे हैं उनको हमें बचाना होगा, साथ साथ में हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बातचीत कर रहे हैं तो उसको अपने खेतों में अपनाना होगा, साथ में गौ संवर्धन को लेकर गौ माता को बचाने के लिए जो अथक प्रयास किया जा रहा है उस पर हमें एक बार फिर से विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस विशेष कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी इसे सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव जरूर करेंगे। तो साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। अब आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। और यदि आपको कुछ प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इवेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी को। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते एक बढ़िया से गीत को, और गीत के बाद फिर सुने अपन स्टोरी को। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

देखो दोस्तों, जो कितनों बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है दोस्तों। ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ये वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपना धन दबा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए, परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंग कर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढे जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है, ऐसा ही है यह संसार। लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों ना हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक

देखो दोस्तों, जापान सब्जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन स्टोरी को सुनना है। आप और कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुने थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देखो साथियों, कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया राकेश कुमार पांडे जी। अब दोस्तों ये गीत के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जावे को समय हो गए है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

0: देखें आप, हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप,
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। तन मन की हानि हो भारी, हैरानी हो तन मन की हानि हो भारी, हैरानी हो कर लो विवेक, कर लो विवेक, हाँ कर लो विवेक।
0: और

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

गलियों गलियों फिरता हूँ कब से, जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी कहीं ना
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे? यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सत्य कहना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना कल तल

0: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई में बारे हमारे सब श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमेंगे आपके संगे आपके रेडियो दोस्त वर्षा। श्रोताओं, हमारे संगे हमारे पहले श्रोता साथी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: हेलो वर्षा दीदी, सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? शारदा प्रसाद जी।
1: जी दीदी बिल्कुल, आपने सही जाना, सही पहचाना। मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सुधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आर्मी वर्षा दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ बुंदेलखंड ओरछा एफएम पर। दीदी आप कैसी हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं शारदा जी?
1: मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और इस गर्मी का आनंद लेते हुए बुंदेलखंड ओरछा को सुन रहा हूँ और आपसे वार्तालाप करने के लिए फोन लगा रहा था। सौभाग्य से मेरा फोन लगा और आपसे वार्तालाप हो रही है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताइए शारदा प्रसाद जी, क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: यदि इस चिलचिलाती हुई धूप गर्मी का महीना है और ऐसे में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जीवन साथी मेरे जीवन साथी साथ में रहना मेरे जीवन साथी। फिल्म का नाम अमृत।
0: फिल्म का नाम अमृत।
1: जी
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म अमृत का, जीवन साथी साथ में रहना। राजेश कुमार जी इस फिल्म में है, इनके ऊपर फिल्माया गया है ये गीत। हेलो
1: जी
0: जी बताइए शारदा प्रसाद जी, और क्या हाल चाल? कल आंधी तूफान आया था आपके यहाँ पे?
1: नहीं दीदी, हमारे यहाँ तो एकदम शांत वातावरण है, बस चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं। हम घर के अंदर रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं, जब मौका मिलता है आप लोगों से वार्तालाप करते हैं। काफी सुखी और प्रसन्नता के अनुभव करता हूँ, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, दिन अच्छा बन जाता है।
0: बिल्कुल। और हमारे यहाँ यानी बुंदेलखंड में कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो गया। टीकमगढ़ क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से भी दो बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो हम हमेशा कहते हैं, रेडियो से कहते हैं, वीडियो के माध्यम से भी कहते हैं कि जब कभी ऐसा मौसम ख़राब हो तो अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का और आप खुद भी ध्यान रखें कि खुले मैदान में बिल्कुल भी ना जाएं, इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, पेड़ों के नीचे खड़े ना हों।
1: जी बिल्कुल, आंधी तूफान की जब ऐसा इसी परिस्थिति निर्मित हो, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आंधी और तूफान या बवंडर जो होते हैं बहुत ज्यादा हमें नुकसान करते हैं। हम उसको सहन नहीं करते, झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली नहीं है जितना शक्तिशाली तूफान और हवा की हवाएं होती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शारदा प्रसाद जी, हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, नमस्कार।

0: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार।
1: जी
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते। आपकी आवाज माइक्रोफोन पर बहुत कम मिल रही है मोबाइल एप्लीकेशन पे।
0: अच्छा, बहुत कम आ रही है हमारी आवाज।
1: जी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज जा रही है मोबाइल ऐप पर, लेकिन आपकी आवाज बहुत धीमी और गाना भी बहुत धीमा जा रहा है।
0: अरे, ऐसा कब हो गया?
1: ऐसा शुरू से ही हो रहा है।
0: शुरू से ही हो रहा है
1: जी। और उस दिन भी सर कार्यक्रम दे रहे थे, उनकी भी आवाजें बहुत धीमी जा रही थी और गाना भी बहुत धीमा सुनाई दे रहा था।
0: अच्छा, और जो मोबाइल पे बात कर रहे हैं उनकी आवाज ठीक आ रही थी?
1: हाँ, उनकी आवाज बहुत तेज आ रही है।
0: चलिए, तो अब ऐसा नहीं होगा, अभी दोनों की आवाज ठीक आएगी, हमारी भी, आपकी भी और गाने की भी, तो तीनों की आवाज ठीक आएगी।
1: जी बिल्कुल मैम, सब कुछ मिला रहता है ना, मिलान साथ रहता है तो बिल्कुल आनंद आ जाता है। और जब उद्घोषक की आवाज ही ना आए और जो बात कर रहा है उसकी आवाज आए तो थोड़ा सा अजीब लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, हमने एकदम ठीक कर दिया है और अब आपको आवाज हमारी सुनाई देगी अच्छी तरह से।
1: जी बिल्कुल मैम।
0: चलिए,
1: और मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: बिल्कुल मैम, गाना मैं सुनना चाहूंगा आपसे, मूवी का नाम है तेरे नाम, उसमें गाना है नाचो ओढ़नी ओढ़ के लाल के दिल परदेसी हो गया।
0: नाचो ओढ़नी ओढ़ के आज
1: ओढ़ के लाल
0: लाल
1: जी कि दिल परदेसी हो गया।
0: अच्छा, चलिए, तो ओढ़नी भी लाल हो गई
2: तो,
0: और दिल परदेसी भी हो गया।
1: जी
0: अच्छी बात है संतोष जी, तो कब हो रहा है ये?
1: मैम मैं बताऊँ आपसे कि समय लघु वन उपज संघ द्वारा निर्मित हमारे जो हमारा खास करके मध्य प्रदेश होता है ना, हरियालियों का मतलब होता है, इसलिए मैम यहाँ पे तेंदू पत्ता लघु वन उपज संघ निर्मित किए जा रहे हैं कार्य, उसी कार्य में मैं भी पूरा परिवार इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ था और तेंदू पत्ता तोड़ करके हम लोग अभी बधाई कर रहे थे।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया।
1: हरे हरे पत्तों को छूना भी अच्छा लगता है और ये जो खरीदी होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें अधिकतम जो श्रमिक होते हैं खास करके गांव में रहने वाले सभी को रोजगार का एक अवसर मिलता है और इसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित लिया जाता है, बहुत अच्छे इसके दाम भी मिलते हैं लोगों को।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, और खूब तरक्की करिए, खूब काम करिए मन लगा के, और ऐसे ही रेडियो बुंदेलखंड भी सुनते रहिए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। और
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी।

0: श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि कौन है वो और कहां से हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में
1: जी। नमस्कार
0: जी, बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में
1: जी?
0: आज के कार्यक्रम में क्या सुनेंगे?
1: हेलो
0: हेलो, आवाज आ रही है आप?
1: जी आ रही है।
0: तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है तुम बिन।
0: और गीत के बोल?
1: रातों को जगाया।
0: रातों को जगाया
1: जी,
0: नींदों को उड़ाया
1: जी।
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। और कुछ कहना चाहते हैं सर?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार बहना जी, प्रणाम, आपके चरण छू रहे।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं?
1: हम तो बहना जी बस बगीचे में लेटे हुए हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं और गीत अच्छे बज रहे हैं तो नींद भी आ रही
0: है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपके तो जलवे हैं।
1: और ये भी बात भी कहना चाहता हूँ बहन जी, हमारा जो गांव है, गांव में एक बर्मा नदी है, बर्मा नदी में बांध का पानी छोड़ा गया तो चारों तरफ पानी ही पानी है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है कि आप पानी के बीच में हैं और बगीचे में हैं और लेटे भी हुए हैं और रेडियो के साथ आनंद ले रहे हैं।
1: आनंद ले रहे, मैंने रेडियो भेजा है बहन आपके व्हाट्सएप पर।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बताइए अपना नाम पता।
1: जी, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मस्का हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से।
0: उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, तो बताइए राजू भैया, आज के कार्यक्रम में क्या सुनेंगे आप?
1: कार्यक्रम में बहना जी सुना दीजिए, जो जूता चुराते हैं गीत है।
0: अच्छा, जूता चुराते हैं गीत है।
1: दूल्हे की साली है, अरे दुपट्टे वाली है।
0: अच्छा अच्छा, किसके जूते चुरा लिए?
1: जूते दे दो पैसे ले लो।
0: नहीं, किसके जूते चुरा लिए?
1: अभी शादी थी मैं तो देखा है हमने कि साली आती है, जीजा के जूते ले जाती है, जूते के साथ बिल भी ले जाती है।
0: अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया राजू।

0: भैया, तो जल्दी से अपनी वो दो शब्द कह दीजिए।
1: आज के
0: हाँ
1: वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ, आज का दिन आपके नाम करता हूँ।
0: बिल्कुल, हमारे नाम
1: भाव
0: है भैया।
1: भाव से भरी इस महफिल में सभी श्रोताओं को बारंबार सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजू भैया। आइए हम चलते हैं इस गीत की ओर और सुनते हैं हम आपके हैं कौन मूवी का ये सुपरहिट गाना, दूल्हे के क्या बोला था
1: दूल्हे की
0: आपने?
1: सालियों हरे दुपट्टे वाली
0: हाँ, जूते दे दो, पैसे ले लो।
1: जी बहन, में अभी हमारे आदरणीय सम्मानित श्री शारदा प्रसाद जी की कॉल शामिल हुई। हो सकता है हम आगे पीछे जुड़ जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा व्यस्त था, कॉल नहीं मिला पाया, नहीं तो हम तुरंत उनके साथ जुड़ जाते।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। नमस्कार
1: जी बहन, बहन अभी प्रणाम, नमस्कार।

0: साथियों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हमारे साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी हम योगेश बोल रहे हैं, बेनापारा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में, बताइए क्या सुनना
1: पसंद? धन्यवाद।
0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: गदर मूवी का कोई भी गीत सुनवा देंगे।
0: गदर मूवी का कोई भी गीत?
1: हाँ
0: या पुरानी?
1: नहीं पुरानी वाली सुनना है, सन्नी देओल का।
0: अच्छा सन्नी देओल वाली
1: जी।
0: चलिए बहुत बढ़िया है, मैं निकला हूँ गड्डी लेके।
1: हाँ जी
0: जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। और कुछ
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फर्मा इसमें। और हमारे साथ हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार बलवान जी, राधे राधे।
0: नमस्कार राधे राधे बलवान जी, कैसे हैं
1: जी? बहना जी हम तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। और आंधी तूफान को क्या हाल चाल है आपके? तैयारी थी का
1: हाल चाल तो बढ़िया है बहना जी सब।
0: चलो तो बहुत अच्छी बात है, बताओ फिर कौन सा गीत सुनने आपको?
1: आज गीत सुनवा दीजिए बहना जी, बादल फिल्म का गीत, मिलने से डरता है दिल।
0: मिलने से डरता है दिल
1: जी, इकरार होना जाए ये वाला गीत
0: जाए। बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, मिलने से डरता है दिल इकरार होना जाए। और कुछ कहना चाहते हैं बलवान जी?
1: जी बहना जी, बस सभी अपने दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे। अभी हमारे राजीव यादव जी जुड़े थे जी, और अनुप कुमार राजपूत जी, इन सभी दोस्तों के साथ इस गीत सुनना चाहेंगे बहना जी। बस
0: बिल्कुल जरूर, हम आपको सुनवाते हैं आपके सभी दोस्तों के साथ ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हमारे साथ हमारे मोहनलाल जी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: खम्मा घड़ी कैसे हैं मोहनलाल जी?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आज।
0: हाँ जी, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। और सब बढ़िया?
1: बहुत बढ़िया है। और तो गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: अरे भाई साहब, गर्मी की मत पूछो, हर जगह गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए आज के कार्यक्रम में क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म का नाम है नसीब। बोल है जिंदगी इम्तिहान लेती है, सुमन कल्याणपुर की आवाज है।
0: जिंदगी इम्तिहान लेती है।
1: हाँ जी बिल्कुल, इम्तिहान ही है, गर्मी अभी इम्तिहान ले रही है।
0: अच्छा, ले रही है।
1: हाँ बिल्कुल जी, 44 डिग्री के आसपास है।
0: अरे चलिए, तो जिंदगी को इम्तिहान से एकदम तैयारी रखिए।
1: धन्यवाद जी।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और आइए हमारे साथ हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार
1: जी। हेलो नमस्कार, प्रीतम सिंह यादव बात कर रहे हैं।
0: प्रीतम जी नमस्कार, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया है, धूप पड़ रही है।
0: बिल्कुल धूप तो पड़ रही हैगी। और सब बढ़िया, आंधी वाँधी ठीक ठाक आई? अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है।
1: अभी तो हम ऐसे समय ऐसे तो तैयार है हमारे डायरेक्ट संचार अभी तो नहीं चलाया।
0: अच्छा तो आप ऐप पे सुन रहे, मतलब पहले रेडियो पे सुनते का?
1: नहीं जब कभी चला देते हैं जब जैसे ऐप पर ना होता है।
0: अच्छा चलो तो बताओ प्रीतम जी कौन सा गीत सुनने आपको?
1: तेरी मोहब्बत में दिल में मकान कर लिया।
0: तेरी मोहब्बतों में
1: दिल में मकाम कर दिया।
0: अच्छा और बताओ, और सब ठीक घर में?

0: बिल्कुल लू से बच भी के लाना है, सतर्क रहें, जब भी घर से बाहर निकलें पानी की बोतल संगे रखें, पानी पियत रहें पर्याप्त मात्रा में, और
1: निकले।
0: बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम जी, चलो तो अपन सुनत हैंगे आपकी पसंद को जो गीत। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो फरमाइश को समय भी इतना ही ख़त्म हो रहा होगा, तो अपन चलत हैंगे आज के कार्यक्रम से। अगली कार्यक्रम में फिर मुलाकात हुई आपसे एक नए बातन के संगे, नए लोगन के संगे और नई फरमाइशन के संगे। चलत हैंगे ऐसे ही, सुनत रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपनो रेडियो अपनी बातें। नमस्कार।

0: बात कहा करती थी, जब मौका मिले तो पीछे नहीं हटना।
1: वेरी गुड, आप ऐसे टाइम पास करते रहो, मेरी भी रेपुटेशन बच जाएगी। दादा बहुत मार्केटिंग की है मैंने आपकी, दूर के ग्रह तक फेमस है दादा, वो दुनिया के इकलौते सुपर हीरो।
2: सुपर हीरो,
1: सुपर हीरो।
0: अरे दीपू, अरे इधर बाल्टी अंदर ले जा, कमर गई।
3: सुपर हीरो स्कूटर पे क्यों बैठ के आएगा, ये तो उड़ के आएगा ना।
1: लगता है लड़के आया है, एलियन आ गया। दादाजी के हाथ पे ट्रेन फेंक के मारी उन्होंने।
0: इन्होंने मान लिया।

0: 90.40 वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
1: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
0: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद है आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और साथ में है मनीष।
0: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुनी रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचें, तो इसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है, तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए हमारे किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं, तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो साथियों ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको या फिर खेतीबाड़ी कह लीजिए, उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम।
0: हाँ जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई है और अब हमारे साथी जो है वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए थोड़ा।
1: तो हम चलते वहां पर हम पहुंचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहां पर शोध होता है, जहां पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं, तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें, तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में

0: युवा है और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो बरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों को संबोधित करने, किसान मतलब जो है सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो है एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने में मिलती है और बिना केमिकल के हम ये सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो किचन से पानी निकलता है
1: जी।
0: और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उगा सकते हैं
1: जी।
0: और दूसरा इसके साथ ही साथ ये हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है, उपजाऊ है, तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में
1: जी,
0: कि हमने एक पोषा ड्रम है, एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, उसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है
1: जी।
0: तो उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
1: जी।
0: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है मिलकर खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाएं और उसमें खाद को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा
1: जी।
0: तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है
1: जी,
0: और लहसुन है
1: जी,
0: इन सब की खेती करके हम लोग ये मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं
1: जी।
0: क्योंकि जब हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
1: जी,
0: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
1: जी।
0: तो हम इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो हम छोटे छोटे स्तर पर टुकड़ों में जब खेतों को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है
1: जी जी।
0: तो हम लोगों को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग पुराने अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती मतलब जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध है यहाँ पे
1: जी।
0: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी हम जो भी जानकारी दे सकते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं हम उपलब्ध रहेंगे
1: जी। और हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है।
0: जी जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ मतलब जो है मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है, तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो है मिर्च है, पालक है और आपका धनिया है, हरा धनिया और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम मतलब ये जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय इनमें कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और समय कम लगने की वजह से हमें भाई देखो हमारे किसान जो है इतना भी सक्षम नहीं है कि भाई ये उसने धान लगाया 6 महीने बाद आया, धान अलग यहाँ नहीं होता है, फिर भी जैसे गेहूं है टाइम टेकिंग है, गन्ना है वो टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिसेस जो नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कृषण क्रियाएं होती है वो नहीं करनी पड़ती, निराई गुड़ाई और बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि

0: शाकीय पौधे होते हैं सब्जियां, और इनको समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए। जब भी लगता है कि हम फ्लावरिंग हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है, तो पानी देता रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसा कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं। और जब हम बड़े किसान हैं, हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब जो व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है जिनकी डिमांड कम है, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है। यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पर, जिसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केट में बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान है वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंट मार्केट के लिए एक बड़े विभाग पे जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली मुंबई में देखता हूँ कि चना भी बहुत जाता है
1: जी,
0: दिल्ली
1: जी,
0: हरा चना
1: जी,
0: तो चने की खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए
1: जी,
0: चना साग बनता है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: तो आप ये यहाँ से चना उगाते रहे, यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है
1: जी। यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं
0: जी, जी।
1: तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है?
0: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाएं, उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेना चाहिए। उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद मतलब उसमें दे रहे हैं तो वो भी उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है। और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग
1: जी
0: या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, मतलब भूमि की तैयारी करने के समय हम उसमें जो खाद डालते हैं देसी खाद
1: जी,
0: और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था का बीज लेना चाहिए, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया हमने उगा दिया
1: जी।
0: हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहाँ से जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स, तो हमें वहां से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो, जो भी इरिगेशन सिस्टम हो, उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए, या फिर ड्रिप इरिगेशन जो है जो बूंदिया सिंचाई होती है सब्जियों में, उसको भी उत्पादन मतलब उसको लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है
1: जी,
0: तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदीय सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में यहाँ पानी इस बार बहुत गिरा है, लेकिन पहली बार चार साल में पांच साल में बहुत कम पानी
1: जी जी,
0: तो ऐसे केस में सब्जियां उगाना बहुत टिपिकल होता है, हार्ड होता है
1: जी।
0: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली
1: जी,
0: हो
1: जी, जी।
0: जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है
1: जी,
0: जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं
1: जी,
0: लेकिन जो साखी है जो पालक है
1: जी
0: ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, तो हमें ऐसी सब्जियों को ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो
1: जी, जी।
0: तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
1: जी। और चलते चलते सर हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: सबसे मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर को पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है आज के टाइम में, आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जितने केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पाएंगे किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को खेती को जो हम एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नए नए टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हमारे सभी जो है जितने भी युवा हैं सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आई इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये तो हमारे कृषि का ये भविष्य है
1: जी।
0: और सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फ्लावर उत्पादन, इसको करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो, सब्जी तो उगाइए, साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं न कहीं कोई कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फूल से भी हम जो मतलब सहायक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।

0: एक बार फिर से साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यावसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैंगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जियां उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की, बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खातों की सब्जियां जो हम खाते हैं, तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाएं, तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करें।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए इसके लिए भी कई तरह की केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। और अगर कोशिश कर सके आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है, तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
1: चलिए, अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
0: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथी हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं, इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
0: साथियों, हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो, या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
2: 92-19-20-77-49।
0: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे,
1: तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आज, चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है, और ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे वो, तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
1: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा। और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
0: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके अर्जे मनीष
0: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: अपना रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथ ही जैसे कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपये आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रूपये और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
0: श्रोता, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों के सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटरशेड परियोजना के माध्यम से मिल सकता है पर ड्रॉप।

0: मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से है, आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारित पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनी होगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी वाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC MI वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आप ने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है
0: 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

साथी भैया हरो नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आ गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा लेके आपके लाने कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ साथी हरो, अम्मा के चौके कार्यक्रम में आप सब जने जाना थेंगे कि अपन अपनी सेहत से जुड़ी हुई बातचीत कर थेंगे और ऐसी रेसिपियन को जाना थेंगे जो अपने लाने आसान हो गए और जिनको अपन आसानी से खा पावे है कि नहीं। तो देखो भैया आप सबको बता देंगे कि मौसम में बदलाव को असर हमारे खान पान पे सबसे ज्यादा परिवर्तन लेके आउट है को। और अगर ई मौसम की बात कर ले भी तो ई मौसम में फल हमें पोषण

0: तत्व देखेंगे, जैसे कि हर मौसम को एक फल होते ही, सो ऐसे ही ई मौसम के भी कछु फल हैंगे जो खावे से अपन को पोषण तत्व भरपूर मात्रा में मिल सकत है, जो अपने शरीर के लाने बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। ई मौसम में तापमान और गर्मी के असर को कम करबे के लाने फलन के राजा आम के संगे संगे तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार, बेल और ऐसे कई तरह के फल हैंगे जिनको खावे से पर्याप्त मात्रा में जो है अपन को प्रोटीन और पोषण मिलत है गो। और भैया हरो देखो आप सबको बता देवे कि गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही, राम धई घाम देखी से तो बुखार से चढ़त जा लगत के बाहरी को कोनो काम ना मिलवे, बस कूलर पंखा में बैठ के अंदर ही अंदर को काम कर लेवे। लेकिन कहा है कि काम काज करवी के लाने बाहर तो निकल नहीं आते हैं, सो अपनी अपनी देखभाल अपन और अनखो कर बहुत जरूरी है वो। और जब भी घर से बाहर निकलवे तो देखो हम वीर वीर आप सब जनन से कहेंगे कि मुड़ी खो ढांक के रखबे, चाहे स्टॉल से ढांक लेवे, चाहे भैया हरो दुपट्टा से। अब दुपट्टा को मतलब जो नहीं है कि पतरो सो दुपट्टा ले लो, अच्छो मोटो सो हो गए दुबला उतर करके डाल लो खो, ऐसे दुपट्टा डालने अपन को ठीक है। और अगर देखो आंखन पर चश्मा लगा लो तो भी आप घाम से भी बच सकते हैंगे। तो भैया हरो आप सबसे क्या वो चाहते हैं कि घाम वो बहुत तेज पड़ रहा है वो, ध्यान रखो अपनो तनक और बाली बच्चन को रखो। बाली बच्चन को कहा है कि अब देखो भी तो नहीं जाना थेंगे कि हमारे लाने का सही है का गलत है वो, सुबह जिद करने लगा थेंगे बाहरें खेलवी की, ऐसे घाम में बिल्कुल आप उनको अनुमति ना दो कि भी बाहरें जाके खेलवे। आप तो बस उन्हें सुबेरे शाम जो ठंडो ठंडो मौसम होते उन्हें खेलवे के लाने को, और घाम में तो बिल्कुल ही ना न करन दो आप बाहर, अंदर ही बैठा रहो, अंदर ही बैठ कर उनके संगे पढ़ाई करवाओ, उन्हें खावे पीवे में बिदाए रहो, जैसे जो पोषण वाली चीजें होती हैं अच्छी अच्छी चीजें भी उन्हें खवाओ। जी नहीं खवाने आपको के नमकीन खुआ दो और समोसा खुआ दे, जलेबी भजिया ऐसी चीजें नहीं खुआने हैं, जो उनके लाने जरूरी है वे चीजें खवाओ जिनसे उनको पोषण मिलवे, जिनसे उनको शरीर ताकतवर बनबे है और ये लपट से बचा रहे। अब देखो अमिया को पनो खू वही चल लो ट्रेंड में है वो, करनी लगत के नई रिलाई ट्रेंड में चल रही, सो ऐसी ट्रेंड में अब अमिया को पनो चल लो बढ़िया, सो अमिया को पनो भूंज के बढ़िया अमियाओं को पनो बना के खुआओ है, प्याज डाल दू मैं खू वही बिला ताकि उनको लपट ना लगबे। इन सब चीजन को अपन को ध्यान रखने हैं, काहे कि अपने को ही जिम्मेदारी होती है कि अपन इनको ध्यान रखवे ठीक है। तो आज के कार्यक्रम अम्मा के चौके में साथी भैया हरो हम आपको बताएंगे कि सेहत को साथी है गो ई मौसम की फल, और फलन की अगर बात करें तो बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनको अपन उन्हें खा सकते हैं, जिनको खाए से अपनो स्वास्थ्य भी अच्छो रहे, अपन को पोषण भी भरपूर मात्रा में मिले और ई मौसम से बचा के भी अपन को रखे। ई मौसम में तापमान और गर्मी के असर को कम करने के लाने फलन के राजा आम की तो बात अपनी कर ही रहेंगे, संगे संगे में अपन करें तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार और बेल की भी बात करें ठीक है। अगर अपन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमें फलन को अपने आहार को एक हिस्सा बना लें जज्जी ठीक है। इनके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हैगी अपनी बाभी मजबूत होतेगी, और संगे में स्वास्थ्य की जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होतेगी उनसे भी जो बचाव थे अपन और अनखो ठीक है भैया। सो का करने अपन को कि गर्मी के फल जो हैंगे भी बीटा कैरोटीन, कैरोटेनॉयड और खनिज तत्वन से भरपूर होते हैं, ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल फ्री रेडिकल्स को कम करके हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव देंगे। केवे को मतलब है गो कि गर्मियन में इन फलन को सेवन करने से अपन और स्वस्थ रहेंगे और आजकल होवे वाली जो बीमारी है उनसे भी अपन बचाव कर सकते हैं ठीक है। तो अब फल कौन कौन से हैं और उनके पोषण तत्व का कहेंगे भी हम आपको आगे कार्यक्रम में जरूर बताएंगे। इतने साथ ही यारो अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से लोकगीत को, साथ ही में आज के कार्यक्रम में अपन जो भी जाने के योग कर वो भी अपने लाने कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो ठीक है। तो बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौके से, आओ अपन और सुनाते एक बढ़िया से लोकगीत को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचो, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ। पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों

जब श्री कृष्ण भगवान नहीं मिले तो देखो गोपियों ने क्या कार्यक्रम किया। ए घर घर ढूंढ फिरती है श्याम को, घर घर ढूंढ

0: से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचो, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको बता देंगे कि हम हैंगे आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं कार्यक्रम अम्मा के चौकी से। जी हाँ साथियों, अम्मा के चौकी में अपन और जान रहे हैंगे कि सेहत के साथी हैंगे ई मौसम के फल। तो प्राकृतिक मौसम में बदलाव के संगे जो आत है भी अलग अलग किस्म के फल भी आते हैंगे और जिनको स्वाद भी ई मौका के लाने बहुत अच्छे होते हैं। स्वाद के संगे संगे पौष्टिकता से भरपूर होते हैंगे जे फल, आपको हमेशा सेहतमंद और मौसमी बीमारियों से भी जे बचाऊ थेंगे, इनकी बड़ी भूमिका में रहेगी। तो साथियों अब जैसे देख रहे हैंगे कि तरबूज खूब ही खूब बिक रहा है बाजारन में और अपने सब साथी चाव से खाउत भी हैंगे इको, तो इके पोषण तत्वन के बारे में अपन कछु बातचीत कर ले में अपने साथियों से। इमें पोषण तत्व के संगे 92% पानी होते है वो तरबूज में मौजूदा विटामिन ए सी और बी भी होते है वो। और इके अलावा आप सबको बता देवे कि एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेन जो कि हृदय और हड्डियों को सेहतमंद बनाते है वो। संगे में साथियों मधुमेह रोगी भी सीमित मात्रा में खा सकते हैं, यानी कि जो मधुमेह के शिकार हमारे साथी हैंगे देखो खावे तो लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है। तरबूज को सेवन कर सकते हैंगे भी, और मतलब कभी कभी ऐसा होते ही ना उन्हें लगत के अरे जो मीठो है को और हम नुकसान ना कर जावे हमें हम खे के नहीं खे, तो वे खा तो सकते ही लेकिन सीमित मात्रा में खावे। और अगर देखो आपकी मधुमेह ज्यादा ही खराब है तो फिर आप बिना डॉक्टर की परमिशन के बिल्कुल भी नहीं खाइयो। लेकिन जिन साथियों को ऐसी कोई समस्या नहीं है वे भरपूर मात्रा में ही खो खा सकते हैं लेकिन लिमिट में, उनके लाने भी सीमित चीजें होती हैं भैया, अति कोनो भी चीज की अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब अगलो नंबर आते गो आम को, जो की फलन को राजा जी खो कही जाऊ थेगी कत के नहीं कदई। इनमें सबसे ज्यादा पाए जावे वाले जो है वे विटामिन ए और सी, फोलेट व फाइबर सेहत के लाने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आम जो है वो हाई ग्लाइसेमिक फलन की श्रेणी में आउट है, ऐसे इको सेवन जो है सीमित मात्रा में करने चाहिए। हालांकि इको भरपूर स्वाद लेवी के लाने अबे थोड़ो से इंतजार आप सबको करने आए, कहे कि अबे बाजार में जो है आम आते रहो लेकिन जब दशहरी आम लगते ना वो बड़ो अच्छो आम लगा थे वो दशहरी को, और सब जने एकदम ललचाऊ देंगे कि अरे भैया दशहरी आ गई अब तो खा लो, रोक नहीं पा रहे अपने आप को, तो बड़ी अच्छी बात है खाएं जज्जी। लेकिन हर चीज को एक सीमित मात्रा में खाएं चाहिए, तो अपने शरीर को भी फायदा दे और अपन को भी फायदा दे। कोनो भी चीज की अति जो है वह अच्छी नहीं होतेगी। अब अगर साथियों उतना ही हम बात कर ले खरबूजा की, तो खरबूजा जो है वो गर्मियों की तपिश कम करवे के लाने, यानी जो गर्मी बहुत भयंकर चल रही है, अरे भैया गर्मी की बात करें तो हमें आकपकी से झूठा लगा, तो गर्मी की तपिश कम करवे में खरबूजा जो है बेजोड़ है वो। इन्हें कहा होते कि एंटीऑक्सीडेंट से जो भरपूर होते है वो, और ये फल में फाइबर के संगे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाओ जाऊ थे वो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण जो मधुमेह रोगियों के लाने भी लाभकारी होते को, लेकिन मधुमेह रोगी जो है इको सेवन सीमित मात्रा में ही करवे, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आप सबको। लेकिन खावे में भी बड़ो स्वादिष्ट होते हैं, क्यों साथी तो अपने पतो का कर रहेंगे कि इके अंदर यानी खरबूजा के अंदर जो बीजा रहेंगे उन बीजा को जो है सुखा लेते धूप में पहले डाल देते, धूप तो वैसे ही इतनी तेज पड़ रही है कि अच्छे अच्छे आदमी भी सूख रहेंगे तो ये तो बीजा ही हैंगे। इनको सुखावे की बात भी क्या कर रहे थे कि इनकी कछु तो बीज ऐसी चीज बनाऊ थे जो उन्हें अच्छी लगती, या फिर इन बीजन के अंदर जो एक चीज निकलत है खावे वाली वह बड़ी स्वादिष्ट लगा थेगी। सो ऐसे भी काफी सारे साथी कर रहे थे, और संगे में जो फल लगावो चाहते हैं कि पेड़ लगावो चाहते हैं तो बेबी इन्हें बचा के रखा तो और क्यारियन में ऐसी डाल देते ही। अब भी हो तो नहीं है तो बात अलग हैगी, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहे थे। अब हम बात करें बेरीज की, तो बेरीज के बारे में आपको बता देंगे कि विभिन्न प्रकार की बेरीज होती हैंगी, जैसे कि ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी आदि। इन सब में जो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होतेगी। इनमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाऊ थे वो, इसे इनको नियमित रूप से जो है अपन को सेवन करें चाहिए। संगई में देखो साथी यारो बाजार में जो है आलू बुखार भी देखी भी मैं आउट है वो। और आलू बुखार की अगर बात करें तो कछु दिनन बाद बाजार में जो आसानी से मिल भी वालो है वो। आलू बुखार जो है वो फाइबर, विटामिन सी और ए को एक अच्छो स्रोत है वो। जो फल जो है वो ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित रखत है वो। इको सेवन सेहत के लाने बहुत ही अच्छो मानो जाऊ थे साथी हेरो। तो जो भी हमारे श्रोता कछु श्रोता साथी इनको तो जो बहुत फेवरेट भी रहते है वो रथ के नहीं रहते सुबह इको खा सकत है। और कछु दरन बाद जो है आलू बुखार आपको बाजार में खूब भरपूर मात्रा में मिल है गो। अब ऐसे ही मैं आपको बता देगी कि बेल जो होतेगी ये फल में प्रोटीन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर इतिक सब पाए जाऊंगे। नियमित अंतराल में बेल को सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाते है और शरीर को अंदर से ठंडक भी प्रदान करते है। साथी वो क्यों अपने साथी है जो बुजुर्ग लोग होते वे अभी भी हैंगे वे का कहत के बेल को शरबत बना के पियते। अब बेल को शरबत कैसे बनाते जो हमें नहीं पतो लेकिन हाँ बेल को शरबत जरूर बनाते भी और उनमें शक्कर डाल के पियत होते जो भी कथते के बहुत फायदेमंद होते वो। और खास तौर से ऐसे घाम से बचाऊ थे ऐसी गर्मी के मौसम में बचाऊ थे ठीक है। अब अगर बात कर ले मैं जामुन की अब साथियों ई फल को स्वाद और लाभ लेवे के लाने कछु समय तक आप सबको इंतजार करने पर है भैया रोका के अभी जो आओ नहीं है। इनमें पाओ जावे वालों जो जाम्बुलिन नामक को तत्व होते गो वो ब्लड में ग्लूकोज को कम करवे में बहुत ही मदद करा थे। यही से हर कोनों को इको सेवन करें जज्जे। मधुमेह रोगियन के लाने तो जो औषधि की तरह काम कर रहे थे वो तो बेबी को खा सकते हैं। अब साथियों कछु और बात हम आपको बता देवे कि मधुमेह रोगी जो है वे समझदारी के संगे हर फल को ले सकते हैं खा सकते हैं। जैसे अगर स्वाद की बात करें तो आम धारणा हैगी कि मधुमेह रोगियन को फल नहीं खाने दे जज्जी लेकिन मधुमेह रोगी जो है वे सब फल को सेवन कर सकते हैंगे। जो सही बात हैगी हर एक फल में अलग प्राकृतिक मिठास होतेगी ऐसे शुगर लेवल जो है वो बहुत गड़बड़ा सकते है वो। इको आसान तरीका जो है वो के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को ध्यान में रखबे ई पैमाने से और जो स्पष्ट हो जाऊ थे वो कार्बोहाइड्रेट से युक्त कोनो भी खाद्य पदार्थ खावे के बाद कौन सी गति से जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकत हेंगे। जो मानक शून्य से लेकर 100 तक है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 से 70 ऐसे खाद्य पदार्थ जो ब्लड में ग्लूकोज को तेजी से बढ़ाऊ थेंगे और शुगर लेवल के आकस्मिक उतार चढ़ाव को कारण भी बनाथेंगे। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 69 से 56 होते ऐसे खाद्य पदार्थ जो मध्यम गति से ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाऊ थेंगे। तो साथी यारो केबी को मतलब जो है वो कि अगर अपने शुगर वाले साथी भैया हैंगे और वे फलन को सेवन करवो चाह रहे हैंगे तो देखो वैसे तो सब फल जो हैंगे वे सही हैंगे लेकिन हम आपसे जो कहवो चाहूंगे कि एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेवे कि हम ऐसे फल खा सकत या नहीं खा सकत। देखो अपन तो डॉक्टर है नहीं है और ना अपन अपने मन से कोनो भी दवाई ले सकत ना अपन कोनो भी अपने मन से फल खा सकत हैंगे क्योंकि अपनो इलाज जो है भी डॉक्टर कर रहे हैंगे। तो डॉक्टरन को काहे गो के भी सही तरीका से आपको बता सकते हैंगे कि आपकी सेहत के लाने आपको शुगर की समस्या हैगी तो उके लाने कौन से फल आपको ज्यादा जरूरी हैंगे जो आपको खाए जज्जी ठीक है। तो जातो हो गए साथी हरो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल। आगे हम आपको बता देंगे कि योग भी अपने लाने जरूरी है। वजन को नियंत्रण रखवो भी अपने लाने जरूरी होते है वो। जैसे कि अगर बात करें कि अनियमित जीवन शैली और खान पान की गलत आदतन के चलत वह वयस्क ही नहीं बल्कि किशोर भी मोटापे को शिकार हो रहे हैंगे साथियों। योग के ई आसन को नियमित अभ्यास करके आप घटा सकते हैंगे वजन और शरीर की अतिरिक्त चर्बी और वजन को कम कर सकते हैंगे उनको नियंत्रण में रख सकते हैंगे। तो आसन को जो नाम है वो धनुरासन है वो इको करवे से पूरा शरीर सक्रिय होते गो। ऐसे वजन घटबे के संगे अन्य शारीरिक जो समस्याएं होती हैंगी उनको भी जो दूर करत है गो। धनुरासन से स्थूलता दूर होतेगी और शरीर को सही आकार मिलत है गो। इको करवे के लाने साथी हरो आपको उपाय करने है क्या बहुत सारे श्रोतान को हमारे जो नहीं है पदों के धनुरासन किसे कथेंगे तो हम आपको बता देवे आप जब प्रक्रिया कर सकते हैंगे। साथियों इको करवी के लाने पेट के बल आप लेट जावे और आपके जो पांव हैंगे उनको कछु दूरी पे और दो हाथन को सीधे रख लेवे। अब घुटनन को मोड़ के कमर के पास ले जावे और अपने तलवन को दो हाथन से पकड़ लेवे। इसके बाद सांस लेत भय छाती को जमीन से ऊपर उठावे और पांव को आगे की तरफ खींचवे। अब शरीर को संतुलित रखत भय सामने की ओर देखवे। लगभग आपको जो 15 से 20 सेकंड बाद सांस छोड़त भय पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन की ओर ले आने है गो। और आपको बता दीजिए कि जो आसन तनक कठिन है गो, लेकिन आप धीरे धीरे इको नियमित रूप से अगर अभ्यास करो तो आप अच्छी तरह से इको कर सकते हैंगे। और अच्छी बात तो जाहु जी के कोई ऐसी व्यक्ति के सामने आप करवे जिको इन सब आसन के बारे में जानकारी हुए, जो को जानत हो, या फिर आप आसान सो तरीका जो भी अपना सकते हैंगे कि कई सारे वीडियो भी आसन के डरे रहेंगे, योग के डरे रहेंगे, तो आप बेबी देख के ये आसन को आसानी से कर सकते हैंगे। इको करवे से कमर और पेट की नहीं बल्कि पूरे शरीर की चर्बी जो है आपकी घट लगा थेगी, घटबो शुरू हो जाएगी। तो साथी भैया आज के कार्यक्रम में बस इतने के ही कह के अपन ने जान लो है वो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल और अपने वजन को संतुलित यानी के नियंत्रित रखवे के लाने योग भी अपने लाने जरूरी है। ये सब बातें अपन ने जानी हैंगी। अब अपना समय भी हो रहे हो आज के कार्यक्रम अम्मा के चौकी से जाबे को। तो जो कार्यक्रम आपको कैसो लगो हमें जरूर बतावे फोन के माध्यम से, आप चिट्ठी पत्री भी हमें लिख सकते हैंगे। तो उनके लाने अपना पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। अब साथी हरो आपको बता देवे कि देखो घाम बहुत तेज पड़ रहा है भैया हरो, ध्यान रखो, अपनो रखो, अपने घर के बुजुर्गन को रखो, अपने घर के जो बाली बच्चा हैंगे उनको भी ध्यान रखने है को। ऐसे में पानी आप सबसे ज्यादा पियत रहे, पानी में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करवे। एकाएक से जब आप धूप से आउट हेंगे तो कूलर की हवा में या एसी की हवा में बिल्कुल ना जावे। जब काकेते तनक देर बाहर बैठ लेवे नॉर्मल सी हवा में, उसके बाद ही आप कूलर या काकेते एसी में जावे। और जो ही नियम आपको जब करने है गो जब आप एसी या कूलर से बाहर निकलत हेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एसी में मान लो बैठे हैंगे बिलात देर से और आपको बाहर जाना है कछु काम से, तो आप क्या करो कि तनक देर पहले नॉर्मल जैसी जगह पे बैठ जावे जिते कूलर पंखा ना चल रहा होवे, तो उते बैठ जावे। उसके बाद आप बाहर निकलवे। बाहर निकलवे के बाद आपको क्या करने है कि आपको सर को हमेशा ढक के रखने है गो, आंखन पे चश्मा लगाने है गो, और हो सके तो हाथन में ग्लेव्स भी पहन लेवे। अगर हमारा भैया गाड़ी से कितों जा रहा है मोटरसाइकिल से, तो हर भैया आपको जो है तौलिया या गमछा को इस्तेमाल तो करना ही है वो ढाक भी के लाने मुड़ी, संगे में हेलमेट भी आपको लगा के जाने है वो, ठीक है। आज के कार्यक्रम में बस इतनी ही, फिर मुलाकात हो जाए आपसे अगले कार्यक्रम में। आप अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबी की अनुमति, हमारी और आपकी अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात हुई है एक नए विषय के संगे। तब तक के लाने नमस्कार।

0: किसान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.9 समाचार सुने के बारे हमारे सब श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे थेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में, और हम हेंगे आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। साथियों आप तो जानते हेंगे कि खेत खलिहान कार्यक्रम हमारे किसान साथियों के लाने बहुत ही उम्दा कार्यक्रम मानो जाऊते को, कहे कि इनमें अपन हो रहे जो बातचीत कर रहे थेंगे वो अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातचीत होतेगी, चाहे फसल को कैसे लगाने हैं उनकी बात कर रहे हैं, फसल में कौन सी कीट व्याधियों को भगावे के लाने का तरीका अपनाना चाहिए वो बतातेंगे, बुआई के तरीका का होतेंगे, तमाम तरह की किसानी से जुड़ी भई जो भी चर्चाएं होती भी अपन और ये खेत खलिहान कार्यक्रम में समय समय पे करत रहेंगे। तो ऐसे ही अपनों खेत खलिहान कार्यक्रम सुन के अपने एक साथी हैंगी नंदिनी अहरवाल जी, जो कि सकरार से हैंगी, जाउन सकरार आपने नाम सुनो हुई है। तो जाउन सकरार से नंदिनी जी ने कार्यक्रम को सुन के अपनो सवाल भी हमसे पूछने की कोशिश करी हैगी, और उनको कैबो हैगो कि आपके कार्यक्रम में जो एक्सपर्ट आउट हैंगे उन्हीं से हमें जा बात जानने हैगी। तो आज हम अपने कार्यक्रम में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सोलंकी सर जी को फोन पे जोड़ रहे हैंगे, और नंदिनी जी को जो सवाल है वो कि उनकी कटहल जो पुरानी कटहल को पेड़ लगो है तो उसमें पीली पड़ रही बार सूख रही हैगी और ये बार फल नहीं लग रहा है। नंदिनी जी के अनुसार उमें फल हमेशा लगाते और बहुत बढ़िया फल लगाते, तो ऐसी अचानक से जो दिक्कत उन्हें आ गई हैगी उनके कटहल के पेड़ में, बा परेशानी को समाधान बे ई कार्यक्रम से जानबो चाहती हैंगी। तो हम अपने कार्यक्रम में डॉक्टर सर को बहुत बहुत स्वागत कर रहे थेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं सर?
1: इस बुंदेलखंड रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से हूँ, और पिछले करीब 15-16 वर्ष से हम बुंदेलखंड रेडियो से जुड़े हुए हैं, किसानों से प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करते रहे हैं। और मैं नंदिनी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने बुंदेलखंड रेडियो के माध्यम से अपने खेती किसानी में उगाए जाने वाले फल पौधों के विषय में चर्चा करने का प्रयास किया, और उसमें जो समस्याएं आई उसके विषय में भी बताया। और कहा गया कि कटहल जो काफी लंबे अरसे से फल दे रहा है उनका
0: जी।
1: लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस वर्ष उसने फल नहीं दिए, पीला भी पड़ रहा है और कमजोर भी है
0: जी।
1: तो मेरा नंदिनी को और नंदिनी के सहित हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो फल पौधों के उगाने में अपने अभिरुचि रखते हैं, उनको मेरा आग्रह है कि जो भी फल वाले पौधे हैं निश्चित रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकता हर फसल को, हर पौधे को, हर जीव को होती है। इसमें लंबे समय से हम अगर उनको पोषक तत्वों का आपूर्ति नहीं करेंगे तो वो फल वृक्ष भी कमजोर हो जाता है, और साथ साथ उसमें फलों का आगम भी कम होता है, और फल फूल आ भी जाते हैं तो ड्रॉप कर जाते हैं। तो इसमें हमारे निरंतर हो जा रही कमियों को देखते हुए जो पोषक तत्व हैं या जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी निरंतर कमी हो रही है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसके लिए मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जितनी परिधि में उनकी छांव होती है, फल पौधे की जितनी परिधि में छांव होती है यानी उस तने से लगभग 8-10 फीट दूर जो उसका तना है उसके 8-10 फीट दूर में 1-1.5 फीट गहरी गड्ढा खोदो, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक चैनल बना दो, नाली बना दीजिए चारों तरफ
0: जी,
1: ठीक है, और बिल्कुल जड़ में नहीं बनाना है
0: जी।
1: जड़ से 10 फीट दूरी पर एक घेरा बना दीजिए और उसका 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा उसमें गड्ढा खोद दीजिएगा, और उसमें जिंक सल्फेट और बोरोन, ये बाजार में बोरेक्स के रूप में मिलता है और जिंक सल्फेट के रूप में मिलता है, और उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और उसी में डीएपी और यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोषक पोटास और महुआ की और नीम की खली, ये पूरा मिक्सचर बना दीजिएगा। तो मिक्सचर बना करके उस गोबर की खाद में मिला करके उसमें डाल दें, उसकी जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को हटा करके दूसरी मिट्टी फिलअप कर दें, उस मिट्टी में ये पूरा मटेरियल मिला करके उसको दे दें, दबा दें उस नाली में और उससे ऊपर पानी लगा दें। ये हमको करना चाहिए था फरवरी से पहले, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप कर देंगी। और या हमारे किसान भाई जितने भी हमारे फल वाले पौधे हैं जो लंबी अवधि तक फल देते हैं, उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाना प्राय देखा गया है
0: जी।
1: उनको ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है और उसी में निरंतर फिर पानी भर दें उस नाली में, मिट्टी का जो है जो मैंने पोषक तत्व बताए वो
0: जी।
1: प्लस भराई करके पानी भर दें तो वो फल देने लगेगा, उसमें फलों की तादाद भी बढ़ जाएगी, जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा।
0: बिल्कुल। तो सर इको उन्हें रिजल्ट जी की हम बात कर रहे थे कि उनको रिजल्ट देख भी के लाना उन्हें।

0: तक मिल पे है को, काहे कि अपन और जो सोचते ही ना कि जैसे ही हमने काम करो तुरंत ही को रिजल्ट हमें देख भी मिल जावे, तो कितने दिन तक उन्हें इंतजार करने पड़े तब जाकर वो पेड़ अपनी पहले जैसी अवस्था में आ पे।
1: देखिए वो जब उसमें ये काम करेंगी तो मैं समझता हूँ एक वीक में, एक डेढ़ से एक से दो वीक में उसमें हरियाली आ जाएगी, है ना
0: जी,
1: पीला को दूर होने लगेगा। और भी जल्दी करना है तो उसमें जो लिक्विड डीएपी आ रही है मार्केट में और जिंक और बोरोन का सॉल्यूशन 0.2% का, या जब भी वो दवा लेने जाए तो किसान भाई जब हमारे दवा लेने जाते हैं किसी दवा विक्रेता के यहाँ से
0: जी,
1: तो वहां से वो एक डोज की नियत मात्रा बताते हैं, हर डोज की मात्रा का गणना वो दवा के अनुसार की जाती है, इसलिए मेरा यहाँ बताना मुश्किल है कि वो कितने परसेंट की दवा है।
0: बिल्कुल,
1: तो जितने परसेंट की दवा होगी उसका उतने परसेंट का सॉल्यूशन बना करके हम किसान भाइयों को ये आगाह करते हैं कि उसका फॉलियर स्प्रे करते हैं तो उसका जल्दी परिणाम आएगा।
0: बिल्कुल जी सर।
1: तो वो जो भी उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है, अगर स्प्रे कर सकते हैं तो स्प्रे करें, और स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो तने के आसपास चैनल नाली खोदे और उसमें ये खुराक भरवा दे, भराई करवा दे।
0: बिल्कुल सर। तो या तो बात हो गई सर अपनी कटहल की, के कटहल को अपन कैसे जीवित रखने हैं वो। दूसरी बात करें सर, अपन देख रहे हैं कछु दिनों से बहुत ज्यादा अपने बुंदेलखंड में अक्सर देखो जा रहा है कि शाम के समय आंधी तूफान जैसो माहौल बन जाते हैं वो, तो ऐसे में अपनी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैंगी उनको बचावे के लाने का तरीका अपने किसान साथी अपना सकते हैं।
1: देखिए इसके लिए तो अब एकाएक तो रोकना असंभव है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और इसके लिए तो हमको बाढ़ विधि ही सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। तो पश्चिमी और उत्तर दिशा में हमारे किसान भाई बाढ़ लगाए और बाढ़ से जो गर्म हवाएं आती हैं उनसे रुकावट होती है और कद्दू वर्गीय फसलों में जो पछुआ हवाएं जो इस समय आजकल चल रही हैं और गर्मी भी उत्तर दिशा से और पश्चिम दिशा से यहाँ से ही गर्म हवाएं आती हैं, इनसे रोकने के लिए हम लोग बाढ़ विधि का प्रयोग करें। और उस बाढ़ विधि में या तो बायो बाढ़ विधि लगा दें जिसमें लंबे लंबे पेड़ पौधे पहले लगाए जाते रहे थे
0: जी।
1: या इतना जल्दी नहीं है तो किसी से भी उस बाढ़ उसकी हवा की गति को हम लोग कम करें, जैसे अपना खेती किसानी का जो कूड़ा करकट निकलता है उसको एक एक डेढ़ फीट ऊंचा तक कर दें, या जो है उसमें मेड़ बना दें थोड़ा ऊंची, और इसके साथ अगर नहीं है तो पानी चैनल लगा, चैनल खुदवा के खाई खुदवा के उसमें पानी भर दें
0: जी।
1: तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो ये प्लानिंग करने से पहले, अब तो किसानों ने लगा दिया है कद्दू
0: जी,
1: कद्दू वर्गीय फसल आ रही है तो उससे लगाने से पहले ही हमको ये प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है कि बढ़ती हुई गर्मी से बचाव हम कैसे करें। तो हमारे किसान भाइयों से है कि जिस दशा से गर्म हवाएं आ रही है वहां चैनल लगा दें, चैनल में पानी भर दें तो उससे रुकावट हो जाएगी, और हवा को रोकने के लिए विंड ब्रेक का कोई भी संसाधनों से उसका रुकावट करें तो हवा की गति कम हो जाएगी तो कद्दू वर्गीय फसल बच जाएगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको, आप हमेशा तत्पर रहेंगे अपने बुंदेलखंड के किसानन के लाने, और जब भी हम आपको फोन करें या आप प्रत्यक्ष रूप से आउटेंगे तो बिल्कुल हमारे किसानन के लाने एक उम्दा जानकारी दे के जाउेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको हम कर वो जाउेंगे सर।
1: चलिए आपको पुनः सादर नमस्कार, सभी हमारे बुंदेलखंड रेडियो कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत।

0: एक बार साथियों रो फिर से बहुत बहुत स्वागत कराथेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में। और बड़ी नौनी जानकारी हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी ने दई हैगी। और जब जानकारी चूंकि हमारे एक श्रोता साथी हैं नंदिनी जी, उनने एक सवाल करो तो उन सवाल को जवाब के लाने हमने विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी से बातचीत करी। और बातचीत कर रही थी हमारी वर्षा जी, तो जो जानकारी पाके शायद नंदिनी जी के मन में जो सवाल हते और चल रहे थे वे सवालों को शायद जवाब मिल गया हुई है। हम कोशिश करत हैंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी जा खेत कल्याण कार्यक्रम को सुनत हैंगे और सुनके बहुत सारे किसान साथी तो हमें फोन करके पूछ लेते हैंगे कि हमारे फसलन में जा परेशानी है या आगे चल के कौन तरीके की फसल हमें करें चाहिए। तमाम प्रकार के सवाल जवाब हो जाते हैं और हम कोशिश कराते हैं कि उन सवालों के जो आपके मन में चला थे उनके जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा आपको उपलब्ध हो जाए, तो हम पूरी कोशिश कराते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप हमारे नंबर 9219207749 पर फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं उनको कहूँ कहूँ तो डर लगा था कि हम रेडियो पर कॉल काय करेंगे और कैसे बातचीत करेंगे, तो चूंकि आपको बताना चाहते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और जो समुदाय के लाने बनाओ गए है वो समुदाय की समस्याएं, समुदाय की जानकारी, तमाम प्रकार की बातें जो हम कार्यक्रम के माध्यम से करते हैंगे। तो आप ही को जो मंच है वो तो जाकर उपयोग करें। हम अब कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। कैसे बहुत सारे हमारे किसान साथी, युवा किसान साथी जो रहेंगे वे यूट्यूब पर जानकारी को सुनबो चाहते हैंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैंगे, हम प्रयास कर रहे हैंगे कि जानकारी रेडियो के संगे संगे अपने जो माध्यम इंटरनेट को माध्यम है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचावे की हम कोशिश करें। छोटे छोटे टुकड़न में जरूर करेंगे, छोटा सा प्रयास करें। हम जो बिल्कुल वादा नहीं कर रहे कि आपको जल्द जाकर हम शुरुआत जल्दी कर देंगे, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम जरूर जाके लाने प्रयास करेंगे। हम मैनेजमेंट जो हमारी कमेटी है उनसे बातचीत करके कोशिश करें कि ये कार्यक्रम को हम लोग लाइव या फिर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ये कार्यक्रम को आप तक पहुँचाएं। तो हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ ही गए होंगे। अब एक बात आती है कि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी, हमारे वर्षा जी फेसबुक पे जो मौसम की जानकारी पहुँचाते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुँचाते हैं आप लोगों तक, तो मौसम की जानकारी जरूरी है। कैसे हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैंगे उनको जानकारी बहुत अच्छी लगत हैगी, उनके लाने मौसम की जानकारी है। और एक बार फिर से पुनः आपसे निवेदन करते हैंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़न चाहते हैंगे तो 9219207749 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चूंकि इंटरनेट के माध्यम से हमारे और कहीं भी हमारे श्रोता साथी इस ऐप के माध्यम से, रेडियो बुंदेलखंड के ऐप के माध्यम से कार्यक्रम को सुन सकते हैंगे। हमें खुशी हुई थे जब सोमवार को और बुधवार को हमारे फरमाइशी कार्यक्रम चलते हैंगे और इतने दूर दूर से हमें कॉल आते हैंगे, खासतौर पर महाराष्ट्र से हमारे किसान साथी जुड़े थेंगे, बड़ा अच्छा लगा था वो। तो हम प्रयास करें ये कार्यक्रम और सुगम और सरल बनाने की कोशिश करें, खासतौर पर यूट्यूब के या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो पहले मौसम की जानकारी सुनो, जाके बाद अपन बातचीत करा थेंगे, लेकिन जैसे पहले अपन संगे संगे गीत संगीत भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गीत संगीत सुनाथेंगे, इसके बाद मौसम की जानकारी अपन सुनाथेंगे।
1: जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती, जीवन

से लाभ है भारी, ई खेती से लाभ है भारी, अपनी भूमि रे खुशहाली, अपनी भूमि रे खुशहाली, सुमाला अरे माला माल कर देती जा, जैविक खेती जीवन भर सुख देती जा, जैविक खेती। फसल उपज खो खूब बढ़ावे, फसल उपज खो खूब बढ़ावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, सुलावई अरे लावई हाँ लावई लाभ हमें देती जा, जैविक खेती जीवन भर।

खुशहाल बनो रे अपनो देश, खुशहाल बनो रे अपनो देश। सो करो आ करो सब जे बिक खेती जा जे बिक खेती।

किसान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुने के बारे हमारे सब किसान साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और श्रोता भैया, हम लेके हाजिर हो गए हैं आप सबके लाने मौसम आधारित जानकारी को। तो जो मौसम आधारित जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वह है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। और जो जानकारी कौन कौन से क्षेत्र के लाने हैं ये बाकी हम आपको बताए दे रहे हैं। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र जिनमें टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और निवाड़ी जिला शामिल है। वो साथियों आगामी 5 दिनों को मौसम को पूर्वानुमान ई प्रकार से है। वो मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र से प्राप्त भई जो मौसम के पूर्वानुमान अनुसार जानकारी बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र के लाने हैगी। और इनमें बताओ गए है वो कि शाम के समय गरज चमक के संग ओलावृष्टि, आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना हैगी। आमतौर पर शुष्क मौसम रह सकते है। वो अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात को न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना हैगी। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि और गरज चमक के संग वर्षा तथा तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले हैगी। सूजी में खड़ी फसल को गंभीर नुकसान भी हो सकत है। वो किसान साथियों को सलाह दी जा रही हैगी कि वे पकी भई जो फल है सब्जियां हैंगी उनकी कटाई को कार्य शीघ्र से कर लेवे। साथ ही में कमजोर फसलों को सहारो भी दे देवे। अब बात करते हैं श्रोताओं मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श की। मूंग में रस चूसक कीट को प्रकोप देखो जा रहे हो, अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण करवे तथा पाए जावे पर बचाव हेतु इमिडाकोप्रिट दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लेवे। जिन किसान भाइयों ने खाली

खेतों की जुताई नहीं करी है। विगत सप्ताह में भारी बारिश से प्राप्त नमी को लाभ लेत भय जुताई को काम कर ली गए। अब बात कर रहे थे फल फूल और सब्जियों के बारे में। किसान भैया टमाटर मिर्च तथा बैगन की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग को प्रकोप देखो जा रहा है। वो इसे बचाव हेतु किसान साथी कोनालफास 25 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर ले गए तथा अभी बारे 7 दिन तक सब्जी को बिल्कुल ना तोड़ गए। श्रोता साथियों, ओलावृष्टि गरज चमक के संगे वर्षा तथा आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना को देखते हुए किसान भाई पान के लगे भय बरेचा की मरम्मत को कार्य कर ले गए। भिंडी की फसल में लाल कीड़ा को प्रकोप हो सकत है वो, अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण कर गए और अगर कीड़ा पाओ जा रहा है वो तो उनके बचाव हेतु ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हो गए पर छिड़काव कर लिए गए। कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि कद्दू, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी को प्रकोप तापमान बढ़ने से दिखाई दे सकते है वो, अतः इसे बचने के लाने अपने किसान भाई ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले दें। किसान भाई नए बाग लगावे हैं तो स्थान को चुनाव कर दें, साथ ही में खुदाई को कार्य भी शुरू कर दे गए। नींबू वर्गीय पुराने पौधा के तने पर चूना में प्लाई टाक्स मिला के लीप कर ले गए ताकि धूप से तना की क्षति ना हो गए। अब बात कर रहे थे ये साथियों अपने पशुओं की, पशु बकरियां और मुर्गियों की। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोटू व जहरी बुखार के टीका जरूर लगवा ले ताकि बारिश के मौसम के आगे तक इनमें अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास हो पावे। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि गरज चमक के संगे वर्षा तथा आंधी तूफान को देखत भय कच्चे छत बारे पशुशालाएं के गिरवे को डर बने रहते हुए सुई से बचने के लाने कच्चे पशुशालाएं की मरम्मत को कार्य भी जल्दी से जल्दी कर ले ताकि कच्चे छत वाले पशुशाला में पशु सुरक्षित रह पावे। तो साथियों जो जानकारी हम आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से, वो जो जानकारी आपको रेडियो बुंदेलखंड पर बताई जा रही है। आज की यह जानकारी इतने के अगली जानकारी हम आप तक फिर से लेके आए हैं। आप ऐसे सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपने रेडियो अपनी बातें। नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। अभी अपन ने जब मौसम आधारित जानकारी को सुनो और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों तक जो जानकारी पहुंच रही हुई है, कैसे अब जो मौसम परिवर्तन हो रहा हो, खासतौर पर गर्मियों में इस तरीके का मौसम परिवर्तन, कहीं कहीं तो जब मौसम इतना करवट ले जाते हैं, कहीं कहीं पानी बूंदाबांदी हो जाते हैं, कितम कितम तो ओले पड़ जाते हैं, तो मौसम करवट जब ले थेगा तो तमाम प्रकार की समस्याएं खेती में भी आते हैं। तो हमें खास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो, उनको बचावे के लाने हमें अथक प्रयास करने हैं। कैसे बच सकत आप सभी श्रोता साथी भली भांति जाको जानत भी हैंगे, कैसे अपनों पर्यावरण को अपन लोग बचा सकत हैंगे। खासतौर पर हमें कोशिश करने के हमें जैविक पद्धति की ओर जावो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आने वाले समय में हम जैविक पद्धति को अपनावे की कोशिश करें, स्वदेशी अपनाएं। वह हमारे कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में जैविक पद्धति से अपना खेती को करने लगे हैंगे और आधुनिक खेती करवो, प्राकृतिक खेती करवो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज वाला विषय भी है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती अगर हमारे किसान साथी करते हैंगे तो बहुत ज़्यादा उनको फायदा भी होते है। अगर जमुनिया की बात करें और हमारे कुलुआ में भी कुछ किसान महिलाएं हैं जिन्होंने जैविक खेती करवो स्टार्ट करो है, वो ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैंगे कि हमारे किसान साथी अब बदलते समय में अपनी खेती भी बदल रहेंगे। तो हमें जब बदलाव के आगे चलने हैं, वो बदलने हैं अपनी खेती की, जब पुरानी पद्धतियाँ हो, नई चीज़ें हो, नई तकनीकी से अपन हो खेती करने हैं, वो तो समय समय पर हम हर बार अपने किसान साथी के लाने तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेके आतेंगे। तो हमें आशा है कि जो जानकारी पा के हमारे किसान साथी जरूर अपने खेती में जरूर बदलाव करें। तो अब वक्त हो चुको है जो कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जावे को, तो कैसे लगो जो कार्यक्रम हमें जरूर बताओ। हमारे जा नंबर पे नंबर है 92-19-20-77-49 या फिर चिट्ठी के माध्यम से आप चिट्ठी पत्रिका भेजना चाहते हैं को पत्रिका को पत्र है मो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम और छतला के पास ओरछा। तो अब हमें देव जावे की इजाज़त, आपकी हमारी फिर हुई है अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। दोस्तों, कार्यक्रम को जैसो नाम है तैसो काम भी है। ई कार्यक्रम में अपन एक विधा सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो आज सुने अपन ई कार्यक्रम में विधा तमूरा, और तमूरा भजनन को अपन आनंद ले हैं। और ई तमूरा भजनन को गा रहे हैं कोमल दास जी। सो कोमल दास जी के स्वर में अपन सुने आज ही कार्यक्रम में जे तमूरा भजनन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में ई तमूरा भजन को।

बिल्कुल दोस्तों, सुमरो बारंबार जी। देखो कितना बढ़िया जो तमुरा भजन अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लाओ है। और ये भजन को गा रहे थे कोमल दास जी और उनके संगी साथी। अब दोस्तों आ रही क्रम में कोमल दास जी के स्वर में फिर से सुनते हैं एक और बढ़िया से तमुरा भजन को, लेते हैं तमुरा भजन को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में।

बिल्कुल, चलने परे जरूर हरी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लो है, ये गीत को गा रहे थे कोमल दास जी। अब कोमल दास जी के स्वर में अपन आगे एक और गीत सुने और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली।

के बाबा बारे के बैरागी। देखो कितना बढ़िया जो अपन ने तमूरा गीत सुनो है, गीत को आनंद लो है। आओ ये गीत के संगे संगे अपन एक और आगे गीत सुनते हैं, गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में, सुनत रहो जो अपनो प्यारो सो कार्यक्रम विधा बुंदेली अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में आगे एक और तमूरा गीत खो।

बिल्कुल निर्गुण खेत उजारे जतन बिन निर्गुण खेत उजारे। देखो कितना बढ़िया जो तमगुरा गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया कोमल दास जी। अब दोस्तों कोमल दास जी के गीत के संगे संगे हम आप और इनको बता दें कि आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतनी समापन होबे को समय हो रहा है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को तो दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति और चलत चलत अपन लिख लो हमारा फोन नंबर और हमारे पते को जिसे के आप और हमारे फोन नंबर पे हमें कार्यक्रम की राय सुझाव दे सकें, पहुंचा सकें हम तक फोन के माध्यम से। और पते पे अगर आप चिट्ठी पत्री लिखवो चाहें तो हमें चिट्ठी पत्री भी लिख सकत। सो हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। एक संग हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो जो नंबर लगा के आप कार्यक्रम के राय सुझाव भी दे सकते के माता दिन भैया हमें आपको कार्यक्रम जो कैसा लगो। सो अब एक संगे संगे देखो अपनो समय भी हो रहा काय के घड़ी इंतजार अपनो निकट अपन खो समय को इंतजार करने आउत। सो घड़ी अपन से कह रही के माता दिन भैया अब आपको ई कार्यक्रम से जाबे को समय भी हो चलो है। तो दोस्तों हमें दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।